नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वाग रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7:00। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना। प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को। युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:00 सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरे की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम 9:00 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घूमर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य, संस्कृति और त्योहार को लेकर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई रही हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10:00 और 10:00 कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच। आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10:00 और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता, प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है।
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुकी जाएंगा, हितर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा त आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहे हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते। ने आप सब नु गणमान स्वागत करो हो अमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी ज हों कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आपते की बातचीत नु विषय है कि आज बारिश नु मौसम आंबा वारो है इन्हें पहले अपने अपने क्षेत्र में जल निकासी नु प्रबंधन हरते करा। तो आना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आपते की घना कानी बातें थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले आपने हमरा विदा अंकित ने मोने करा अपनी बातें। तो बायन बोनो आप हम बढ़ते रहो आपू रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: खेत है जिसमें अधिक पानी भरता है, तो उम्मीद ये रहती है कि कुछ ना कुछ तो आपको वहां से मिल ही जाएगा, पूरी तरह से फसल नष्ट नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसका कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: दूसरा है कि जल निकासी का जो आप बात कर रहे थे कि जैसे उत्पादन के हिसाब से किस तरह से फसलें करें, तो जैसे जो निकासी है उससे क्या होता है कि आपकी नुकसान भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है, लेकिन वो तय करता है आपका ज्ञान कि आप किस तरह उसका प्रबंधन कर रहे हो, कहाँ पे आपको अनाज लगाना है, कहाँ पे दालें लगानी है, कौन सी दालों में पानी ज्यादा चाहिए होता तो वो वहां पे लगाए आप, तो इस तरह से है। तो पूरा जो है ढांचा वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि कार्यक्रम में आपने हमें बताया कि किस तरीके से पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समाधान को हम जल निकासी के प्रबंधन में काम में ले सकते हैं, यही समुदाय और किसान साथियों की इसमें क्या भूमिका है?
0: देखिए, समुदाय और किसानों की भूमिका की बात करें तो जब बारिश का मौसम है तो उस समय एक तो नियमित आप निरीक्षण करें खेत का, कहाँ ज्यादा पानी भरा है या कटाव की स्थिति है उसको देखें।
1: बिल्कुल,
0: आपकी वहाँ पहले से नालियाँ बनी हुई है तो उनकी सफाई जरूर करें, जहाँ पे जल भरा हो आपको दिखता है तो उसकी निकासी की व्यवस्था करें आप लोग। और जैसे ज्यादा अगर जल भरा हुआ है तो जब जब वो सूख जाता है तो वहाँ पे देसी खाद का उपयोग करें ताकि उन फसलों पे ज्यादा नुकसान न हो।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और जो हांगणी खेती है उसको हमें अपनाना चाहिए ताकि रिस्क बहुत कम रहेगी और आपका उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा।
1: जी हाँ।
0: तो इस तरह से कर सकते हैं। सामुदायिक अगर हम बात करें तो जैसे श्रमदान की बात करते हैं हम कि अगर सामूहिक कोई जल भरा हुआ है तो आप श्रमदान के माध्यम, जैसे हम हलमा करते हैं तो हलमा के माध्यम से आप उसका समाधान करें, आप मेड़ बना सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, एनिकट का निर्माण कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा एक ये भी है कि समुदाय है जो अभी वर्तमान के युवा है उनको पुरानी जो विधियां हैं उनके साथ संवाद करें, उस ज्ञान को वहां तक पहुंचाए।
1: जी जी।
0: तो इस तरह से आप आपके खेत का प्रबंधन है जो जल भराव का अच्छे से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को दी है। तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मैं सभी श्रोतागणों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जो हमारे परंपरागत उपाय हैं उसको हमें वापस से अपनाना चाहिए और जल भराव और जल कटाव से जो नुकसान होता है उससे बचाव के लिए आप नियमित निरीक्षण करें और उसका सही समाधान जो है वहाँ पर लागू करें।
1: बिल्कुल। तो सर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: બાઈન બોનો જેમ કે આપણે આપણે વ્યાસમી માંગીલાલ જે જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તે કે ઘણા કની વાતે બતાડી હે કે હર તે આપણને કઈ કઈ ચીજનું ધ્યાન રાખવું હે ને હર તે જલ નિકાસીનું પ્રબંધન કરવું હે, સમુદાયની હું ભૂમિકા હે ને આંતે કી હર તે આપણે આપણી ફસલને હોસે રાખી શકો। તો વાતે ઘણા કની થઈ ગઈ હે ને હવે ટાઈમ ભી થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડો પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટા।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
3: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना ना कदम है ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा।

0: होता श्रोता साथियों, बल्कि वो मुश्किल समय में साथ खड़ा होता है, ईमानदारी से बात करता है और आपके अच्छे बुरे दोनों समय में आपकी परवाह करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो आज कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानेंगे कि बच्चे कैसे पहचान सकते हैं कि उनकी दोस्ती सच्ची है या नहीं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
0: जी हाँ,
1: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में पहले गीत सुन ले हम।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चे कैसे जाने कि उनकी दोस्ती सच्ची है। जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले भी बताया था कि बचपन की दोस्ती जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि श्रोता साथियों, ये रिश्ता न तो स्वार्थ से जुड़ा होता है न ही किसी लालच से। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके मन में ये सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि क्या मेरी दोस्ती सच्ची है। साथियों, ये जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वे अपने जीवन में अच्छे और सच्चे मित्रों को पहचान सके।
1: बिल्कुल,
0: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बच्चों को बताएंगे कि वे कैसे जान सकते हैं कि उनकी दोस्ती सच्ची है या फिर नहीं।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि सच्चा दोस्त जो होता है वो हमें वैसा ही पसंद करता है जैसे कि हम होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, वो आपके रंग रूप, कपड़े, पढ़ाई या खेल की योग्यता के आधार पर दोस्ती नहीं करता। वो आपकी कमजोरियों को जानकर भी आपके साथ बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कभी खेल में हार जाएं तो वो आपको ताना नहीं मारेगा, बल्कि आपको और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। हम देखते हैं कि जब आप दुखी होंगे, चोट लगी हो, किसी ने डांटा हो या अकेला महसूस कर रहे हो, तो आपको समझाएगा और वो आपके साथ रहेगा। वो आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा, चाहे खुद थोड़ी मुश्किल में ही क्यों न पड़ जाए।
0: जी हाँ, साथी एक सच्चा दोस्त हर परिस्थिति में आपके साथ होगा। साथियों, चाहे खुश हो या दुखी, वह सिर्फ खेलने या खाने के समय नहीं, आपकी परेशानी के समय भी आपके साथ खड़ा होगा।
1: बिल्कुल,
0: जब आप कोई गलती करेंगे तो एक सच्चा दोस्त आपको डांटने के बजाय प्यार से समझाता है और आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। क्योंकि अंजलि जी, जो दोस्त हमारी उपलब्धियों पर ईर्ष्या करते हैं वे सच्चे दोस्त नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: बल्कि एक सच्ची दोस्ती वही होती है जो आपकी उपलब्धियों पर श्रोता साथियों ईर्ष्या नहीं करता हो, बल्कि आपके साथ आपकी खुशियां मनाता हो, वही सच्चा दोस्त कहलाएगा।
1: जी हाँ,
0: जो दोस्त आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी तारीफ करता हो और आपकी बुराई नहीं करता हो, वही सच्चा मित्र है।
1: जी हाँ कशिश, हम कह सकते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमसे झूठ नहीं बोलता और न ही हमें धोखा देता है। श्रोता साथियों, वो आपके सामने ईमानदार रहता है। अगर आपने कोई भी गलती की है तो आपको प्यार से बताएगा, पीछे आपकी बुराई नहीं करेगा।
0: बिल्कुल,
1: आपकी कोई भी बात दूसरों को मजाक बनाकर नहीं बताएगा। अगर आप किसी प्रतियोगिता में जीतते हैं, अच्छे अंक लाते हैं या कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो सच्चा दोस्त खुशी से ताली बजाएगा, न कि जलन से दूर हटेगा। अगर यही बात करें कि कैसी दोस्ती में सतर्क रहना बहुत जरूरी है श्रोता साथियों, तो कशिश, जो दोस्त सिर्फ जब उन्हें आपकी जरूरत हो तब बात करें, ऐसे दोस्तों से हमें सतर्क रहना है।
0: जी हाँ,
1: जो दोस्त आपकी बातों को दूसरों के सामने हंसी का विषय बनाए, ऐसे दोस्तों से भी हमें दूरी बनानी है। जो जरूरत पड़ने पर साथ दे, जो जलन करे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करें, जो गलत रास्ते दिखाए, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या पढ़ाई से भागना, ऐसे दोस्तों से हमें सतर्क रहकर दूरी बना लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथी दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ मजबूरी में रह रहा है, आपका मजाक उड़ाता है, बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, साथ ही बात बात पर लड़कर रिश्ते तोड़ने की धमकी देता है, आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाता है या फिर आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराई करता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो आपका सच्चा दोस्त बिल्कुल नहीं है।
1: जी बिल्कुल,
0: ऐसे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही अब यही बात आती है कि हम सच्चे दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ईमानदारी की बात सबसे पहले हम करते हैं कि हमें खुद भी सच्चे बनना है, तभी सच्चे दोस्त हमें मिलेंगे।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही दूसरों की मदद आप करें और जरूरत पर अपने दोस्त का साथ दें। केवल अपने फायदे के लिए नहीं दोस्तों, स्वार्थी आप न बने। इसी के साथ ही दोस्तों की बातें ध्यान से सुने और उसकी भावनाओं की कदर आप करें।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पा रहे हैं कि बच्चे कैसे समझे कि उनकी दोस्ती सच्ची है या नहीं। ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कहना चाहेंगे कि सच्ची दोस्ती की पहचान करना बच्चों के जीवन का जरूरी हिस्सा है। जब बच्चे सीख जाते हैं कि कौन सी दोस्ती सच्ची है, तो वे जीवन में सही रास्ता चुन पाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा दोस्त जीवन भर साथ होता है, जो हंसी में साथ हो और आंसू में कंधा दे। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि सच्चा दोस्त वही है जो पढ़ाई और अलग जो चीजें होती हैं उनमें सुधार के लिए हमें सलाह दे। अगर आप गुस्सा करते हैं या झूठ बोलते हैं तो प्यार से समझाएं, डांटे नहीं और पीठ पीछे आपकी बुराई ना करें।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सच्ची दोस्ती बच्चों के जीवन में सबसे कीमती और सीख देने वाले अनुभवों में से एक होती है। कशिश यह न केवल खेलने हंसने तक सीमित रहती है, बल्कि बच्चों को सहानुभूति, ईमानदारी, विश्वास, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे जीवन के असली मूल्य सिखाती है।
1: बिल्कुल,
0: एक सच्चा दोस्त वह होता है श्रोता साथियों, जो आपके साथ तब भी खड़ा हो जब आपसे सब दूर हो जाए, जो आपकी अच्छाइयों पर खुश हो और जो आपकी गलतियों पर चुप न रहकर सुधार का रास्ता दिखाए।
1: बिल्कुल, और ऐसा भी कहा जाता है अंजलि जी कि बचपन में अगर सच्चा दोस्त मिल जाए तो ये किसी वरदान से कम की बात नहीं है। ये दोस्ती जीवन भर आपके साथ बनी रह सकती है। सच्चे दोस्त न सिर्फ आपके साथ खेलते हैं, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनने में भी मदद करते हैं। वे हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं और अच्छे रास्ते की ओर ले जाते हैं। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमारे बच्चों को समझना होगा साथियों कि दोस्ती केवल एक साथ खेलने या फिर हंसने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे को समझने और साथ निभाने की भी बात है। अगर कोई दोस्त इन कसौटियों पर खरा उतरता है तो हमें ये समझ लेना है कि वही हमारा सच्चा दोस्त है।
0: जी हाँ।
1: और एक बात और श्रोता साथियों कि खुद भी वैसा ही दोस्त बनने की आप कोशिश करें जैसा आप दूसरे दोस्त में देखना चाहते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि हर हंसने बोलने वाला व्यक्ति उनका सच्चा मित्र नहीं होता। दोस्ती वह होती है जो गिरने पर उठाए, जो गलती करने पर डांटे नहीं बल्कि समझाए, और जो अकेलेपन में सबसे पहले साथ दे। आज के बदलते और प्रतिस्पर्धा भरे माहौल में जहां स्वार्थपूर्ण संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं बच्चों को यह समझना जरूरी है कि सच्ची दोस्ती भावना से जुड़ी होती है, मतलब से नहीं। यदि बच्चा यह पहचानना सीख जाए कि कौन उसका सच्चा दोस्त है, तो वह न केवल भावनात्मक रूप से मजबूत बनेगा बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेगा।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें अपने बच्चों को सिर्फ दोस्ती करने ही नहीं बल्कि अच्छी और सच्ची दोस्ती चुनने और निभाने की भी शिक्षा देनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: बचपन की दोस्ती ही जीवन की सबसे मजबूत नींव होती है।
1: बिल्कुल।
0: सच्ची दोस्ती किताबों में नहीं, दिल में लिखी जाती है। एक सच्चा दोस्त 100 खिलौनों से कहीं अधिक कीमती होता है।
1: जी हाँ। इसी के साथ दोस्तों ये बात भी आप ध्यान में रखें कि दोस्ती में दिखावा नहीं होता। यानी कि अंजलि जी, जो दोस्त केवल अच्छे कपड़े, खिलौने या फिर टॉफी के लिए साथ रहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: वे सच्चे मित्र नहीं माने जाते हैं। सच्चे मित्र दिल से जुड़े होते हैं साथियों, चीजों से नहीं। दोस्ती में भरोसा भी जरूरी है, लेकिन हर बात साझा करना नहीं। अगर कोई बात आप नहीं बताना चाहते हैं तो सच्चा दोस्त आपकी निजता की इज्जत करेगा श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही जब सब साथ छोड़ दे और एक दोस्त आपके पास खड़ा हो, वही आपकी सच्ची दोस्ती की असली पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई दोस्त आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है और आपकी तुलना नहीं करता किसी और दोस्त से, तो वही आपका सच्चा मित्र है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे अंजलि जी कि दोस्ती में माफी और समझदारी भी जरूरी होती है। जैसे कि दोस्तों, कभी कभी दोस्तों में भी लड़ाई हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उस दोस्ती को खत्म करने के बजाय माफी मांग लेना और भूल जाना लड़ाई को सच्ची दोस्ती की निशानी होती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम हमारे अभिभावकों से यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को दोस्ती करने देना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उन्हें सिखाना कि दोस्ती में आत्मसम्मान जरूरी है। जब कोई दोस्त उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो ना कहने का साहस रखें, अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भी इज्जत करें।
1: बिल्कुल।
0: बचपन की सच्ची दोस्ती आत्मा को छू जाती है और जीवन पर प्रेरणा देती है। वह किताबों से नहीं, अनुभव से सिखाती है कि साथ निभाना क्या होता है। तो इस तरीके से कशिश, हमने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि दोस्ती क्या है और सच्ची दोस्ती के महत्व को हमें कैसे समझना है और बच्चे कैसे पहचाने कि उनकी दोस्ती सच्ची है या झूठी।
1: बिल्कुल।
0: तो आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, दोस्ती वो नहीं जो सिर्फ खेल के मैदान में साथ दे, बल्कि वो है जो जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ी रहे। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों, अब हम कार्यक्रम के माध्यम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें

0: हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ,
0: तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जाऊ है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
5: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
6: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन तकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
8: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
9: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
10: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
11: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
12: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
13: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
6: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो मानवता, सेवा और जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल,
1: ये विषय है रक्तदाता का महत्व। मनीषा और कशिश, रक्तदान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं है बल्कि मानव जीवन को बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है।
2: बिल्कुल,
1: जब कोई व्यक्ति अपना रक्तदान करता है तो वो किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन देने का कार्य करता है।
2: जी हाँ,
1: दुनिया में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती है श्रोता साथियों जब किसी मरीज को तत्काल रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में रक्तदाता किसी देवदूत की तरह सामने आते हैं और किसी की जिंदगी बचा लेते हैं।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना यहाँ पर एक प्यारा सा गीत हमारे साथियों को हम पहले सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं रक्तदाता के महत्व को लेकर।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि जागृति जी हम सभी जानते हैं कि रक्तदान को महादान कहा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा दान है जो सीधे किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में मदद करता है। हम देखते हैं कि दुनिया में अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब किसी मरीज को तुरंत रक्त की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि दुर्घटनाएं हुई, प्रसव के दौरान अधिक रक्त बहना हो गया, या फिर कोई अन्य गंभीर बीमारी साथ हो। इन सभी चीजों से पीड़ित लोगों को समय समय पर रक्त की जरूरत पड़ती ही है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में रक्त करने वाले लोग किसी के लिए जीवन दाता बन जाते हैं, जैसा कि आपने बताया था जागृति जी।
1: बिल्कुल,
0: और आज के समय में तो युवाओं की भूमिका रक्तदान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है।
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि मानव जीवन अनमोल है। किसी व्यक्ति का जीवन बचाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है।
1: बिल्कुल,
2: आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अनेक रोगों का उपचार संभव बनाया है, लेकिन आज भी रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं बनाया जा सका। जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, तब केवल एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान ही उसकी जान बचा सकता है।
1: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। रक्तदान केवल रक्त नहीं देता, बल्कि किसी परिवार की खुशियाँ, किसी माँ का बेटा, किसी बच्चे का पिता और किसी व्यक्ति का जीवन बचाने का कार्य करता है।
3: जी हाँ मनीषा, क्योंकि रक्त हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचाने का कार्य करता है। कशिश, यदि किसी व्यक्ति के शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकल जाए तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
3: जैसे कि हम देखते हैं कि दुर्घटना, ऑपरेशन, प्रसव, गंभीर बीमारियां या प्राकृतिक आपदाओं के समय रक्त की आवश्यकता बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल,
3: ऐसे में रक्तदाता की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा और कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि आज चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है।
1: जी हाँ,
3: लेकिन अभी तक कोई ऐसी कृत्रिम व्यवस्था नहीं बन पाई जो मानव रक्त का पूर्ण विकल्प बन सके।
1: बिल्कुल,
3: रक्त केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही दान कर सकता है। इसीलिए रक्तदाता समाज की अमूल्य संपत्ति होते हैं। वे न केवल किसी व्यक्ति को जीवन दान देते हैं, बल्कि समाज में सेवा और परोपकार की भावना को भी मजबूत करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम कह सकते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग है वो ऊर्जा, उत्साह और अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर होते हैं। यदि हमारे युवा साथी नियमित रूप से रक्तदान करने का संकल्प ले ले तो देश में रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, रक्तदान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं है, बल्कि ये मानवता, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है।
1: बिल्कुल,
0: हम जैसा कि हमारे श्रोता साथियों को बता पाए ही है कि रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई स्वस्थ व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रक्तदान में देता है।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, आपसे यहाँ पर कहना चाहेंगे कि सामान्य तौर पर एक बार में लगभग हम 450 मिलीलीटर रक्त ही दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर का बहुत छोटा भाग रक्त का होता है।
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल। और हम देखते हैं कि कुछ ही समय में शरीर इस भाग की भरपाई भी कर लेता है। इसलिए श्रोता साथियों, रक्तदान करना हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया होती है।
1: जी हाँ,
0: जिसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा स्वच्छ और वैज्ञानिक तरीके से रक्त लिया जाता है, और एक बार उपयोग होने वाली सुई और उपकरणों का उपयोग भी सुरक्षित तौर पर किया जाता है।
1: जी हाँ,
0: जिससे संक्रमण का कोई खतरा भी नहीं रहता। जागृति जी और मनीषा
2: जी, बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रक्तदान करके व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करता है।
0: बिल्कुल,
2: रक्तदाता यह नहीं देखता कि रक्त पाने वाला व्यक्ति किस जाति, धर्म या वर्ग से संबंधित है। वह केवल एक इंसान की सहायता करता है। साथ ही हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य आपातकालीन घटनाओं में अचानक बड़ी मात्रा में रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है।
1: बिल्कुल,
2: ऐसे समय में रक्तदाताओं की उपलब्धता अनेक लोगों की जान बचा सकती है।
3: तो जैसा कि मनीषा और कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं रक्तदाता के महत्व को लेकर, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी रक्तदाता के महत्व को लेकर, तो कहा गया है कि न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव, रक्तदान से बड़ी मानवता का प्रभाव।
1: बिल्कुल।
0: कि श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि रक्तदान के माध्यम से समाज में भाईचारे और मानवता की भावना मजबूत होती है।
1: जी हाँ।
0: रक्तदान करते समय न तो जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, न ही भाषा देखी जाती है।
1: बिल्कुल।
0: रक्त का रंग सबका एक समान होता है।
1: जी हाँ।
0: संदेश हमें मानव एकता और समानता की प्रेरणा देती है।
1: जी हाँ।
0: रक्तदान हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों, रक्तदान का एक महत्व ये भी है कि वो मानवता की सेवा और जीवन बचाने का सबसे सरल माध्यम है।
0: बिल्कुल।
1: जैसा कि हमने हमारे युवा साथियों को बताया था जागृति जी, कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। इसे श्रोता साथियों केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ही दिया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: जब किसी मरीज को तत्काल रक्त की आवश्यकता होती है, तब रक्तदाता ही उसकी आशा बनता है। दोस्तों, एक यूनिट रक्त कई लोगों के जीवन को बचाने में जरूरी और सहायक माना जाता है। हम देखते हैं कि रक्तदान हमें मानवता की सेवा करने का सबसे अच्छा अवसर देता है।
0: जी हाँ।
1: जब हम किसी अजनबी की मदद के लिए रक्तदान करते हैं, तब हम समाज में सहयोग और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करते हैं।
0: बिल्कुल
2: जी, बिल्कुल कशिश। इसी के साथ हम देखते हैं कि रक्तदान लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी और सहयोग की भावनाओं को भी बढ़ाता है। इससे समाज में एक दूसरे की मदद करने की संस्कृति भी विकसित होती है।
1: बिल्कुल।
2: साथ ही हम देखते हैं कि युवा किसी भी देश की शक्ति होते हैं। उनकी भागीदारी से सामाजिक परिवर्तन तेजी से संभव होता है। श्रोता साथियों, रक्तदान के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही हम देखते हैं कि युवा सोशल मीडिया, विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से रक्तदान के प्रति जागरूकता भी फैला सकते हैं। जागृति जी,
1: बिल्कुल।
0: और हम कह सकते हैं मनीषा कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है।
1: जी हाँ।
0: यदि युवा रक्तदान को अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बना लेंगे, तो हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, रक्तदान केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य भी है।
1: जी हाँ।
0: कशिश, हमें समझना होगा कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब हमारे किसी अपने को रक्त की आवश्यकता पड़े।
1: बिल्कुल।
0: हम आज रक्तदान करेंगे श्रोताओं, तो कल किसी और का रक्त हमारे प्रिय जन का जीवन बचा सकता है।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि रक्तदाता समाज के वास्तविक जीवनदाता होते हैं। उनका योगदान अमूल्य है और उनका महत्व शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: रक्तदान एक ऐसा दान है जो दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के जीवन को सार्थक बनाता है। ये सेवा, करुणा और मानवता का सर्वोच्च उदाहरण है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए श्रोता साथियों, हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए, हमारे मन में ये बिठा लेना चाहिए कि स्वस्थ होने पर नियमित रूप से रक्तदान करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि किसी की धड़कनों को चलाए रखने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। रक्तदान करके हम किसी के जीवन की बुझती हुई आशा को फिर से जगा सकते हैं। मनीषा और कशिश, इसीलिए श्रोता साथियों आगे बढ़िए, रक्तदान कीजिए और मानवता की इस महान परंपरा को मजबूत बनाइए।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हमारे युवा साथियों से बातचीत हमारी चल रही है कि रक्तदान महादान कहलाता है, इसी बीच हमारे दोस्तों को हम ये बताना चाहेंगे कि जब हम रक्तदान करते हैं युवा साथियों, तो इसके ढेर सारे फायदे भी होते हैं।
0: बिल्कुल
1: हाँ। जैसे कि सबसे पहला फायदा तो यही है कि हमें स्वास्थ्य जांच का अवसर मिलता है। जैसा कि जागृति जी, हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी आज के समय में काफी व्यस्त हो चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वे अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी कभार गंभीर भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे में हमारे युवा साथियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर ये हो सकता है कि अगर वे रक्तदान करेंगे, तो रक्तदान करने से पहले उनके स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी।
0: जी जी हाँ।
1: जैसे कि श्रोता साथियों, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, वजन और कई ऐसी जानकारियां इस जांच के दौरान हमें पता चलती है।
0: जी हाँ।
1: इससे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जानकारी मिलती रहती है। और देखते हैं कि रक्तदान के बाद शरीर नए रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण करता है।
0: जी हाँ।
1: इससे रक्त निर्माण की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो सक्रिय होती है और हमारा शरीर स्वयं संतुलित हो जाता है।
2: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में हर वर्ष लाखों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। बढ़ती जनसंख्या, दुर्घटनाओं और बीमारियों के कारण रक्त की मांग लगातार बढ़ रही है।
1: बिल्कुल।
2: हम देखते हैं कि कई बार अस्पतालों में रक्त की कमी के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
1: बिल्कुल। जी हाँ।
2: श्रोता साथियों, यदि प्रत्येक व्यक्ति, स्वस्थ नागरिक वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान करे, तो जागृति जी, देश में रक्त की कमी की समस्या को लगभग समाप्त किया जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लिए जीते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं मनीषा और कशिश जो दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए आगे आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: रक्तदाता वही असाधारण व्यक्ति होता है जो बिना किसी पहचान, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी अपेक्षा के किसी अनजान इंसान को जीवन का सबसे अनमोल उपहार देता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, हमारी नसों में दौड़ता रक्त केवल हमारे शरीर की शक्ति नहीं है बल्कि समाज की आशा भी है। यदि हर स्वस्थ युवा वर्ष में कुछ बार रक्तदान करने का संकल्प ले ले कशिश, तो न जाने कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती है। ये वो सेवा है मनीषा, जिसमें न कोई खर्च होता है न कोई दिखावा होता है, लेकिन इसका प्रतिफल किसी के जीवन के रूप में मिलता है।
1: बिल्कुल जागृति जी,
0: साथियों आपको कहना चाहेंगे कि हम रक्तदान करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और मानवता की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा अगर हम मन में ठान लेंगे, हम कई युवा साथियों की, कई लोगों की जान बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सच्ची महानता बड़े पद या बड़ी संपत्ति में नहीं बल्कि किसी के जीवन का सहारा बनने में होती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए याद रखिए, हमारे द्वारा किया गया रक्त कुछ ही मिनटों में दान हो सकता है, लेकिन वही रक्त किसी व्यक्ति को जीवन के कई नए वर्ष भी दे सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ, और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दे हम।
0: जी,
2: जी
0: हाँ।
2: बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
2: जी हाँ,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
3: नमस्कार।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है। विकसित भारत एक नारा नहीं, एक संकल्प है। जैसे कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी पहचान उसकी

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातचीत भी रही थी आपसे, कि आज हमारी बातचीत है आपसे विकसित भारत एक नारा नहीं संकल्प है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि विकसित भारत का अर्थ केवल बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और आधुनिक तकनीक नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है ऐसा भारत जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, हर युवा को रोजगार मिले, हर किसान समृद्ध हो, हर महिला सुरक्षित हो और सशक्त हो, तथा हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके।
1: जी जी।
0: इसलिए कहा गया है कि

0: विकसित भारत का सपना तभी होगा साकार जब हर नागरिक निभाए अपनी जिम्मेदारियों का भार।
1: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से विकसित भारत का अर्थ जो है वो हमें समझने की जरूरत है। जैसा कि आपने बताया कि हमारे मन में आधुनिक शहरें, चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार इंटरनेट और नई तकनीकों की तस्वीर उभरती है जब हम विकसित भारत की बात करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या केवल यही विकसित भारत है? क्या विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति है, या फिर इसका अर्थ एक ऐसे भारत का निर्माण है जहां हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन मिले? तो बात करते हैं जागृति जी कि विकसित भारत का वास्तविक अर्थ क्या है। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि विकास का अर्थ केवल धन की वृद्धि नहीं होता। यदि किसी देश में बड़ी बड़ी इमारतें हों लेकिन लोग अशिक्षित हों, बेरोजगार हों और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो तो उसे पूरी तरह विकसित नहीं कहा जा सकता।
0: हाँ।
1: विकसित भारत का अर्थ है हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हर परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इसी के साथ जागृति जी महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षा मिले।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि विकसित भारत की नींव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यदि देश का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेगा और युवाओं को कौशल विकास के अवसर मिलेंगे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा शक्ति बन सकता है।
1: जी जी।
0: शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं श्रोताओं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार भी है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है अंजलि। देश की बड़ी आबादी युवा है, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल।
0: युवा ऊर्जा है, उत्साह और नवीन विचारों का प्रतीक होते हैं। यदि युवा सही दिशा में अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे, मेहनत करेंगे, नवाचार करेंगे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो विकसित भारत का सपना शीघ्र ही साकार हो जाएगा।
1: जी जी।
0: युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार सृजन करने वाला भी बनना होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद लंबा सफर तय किया। एक समय था जब देश जो है वो खाद्यान्न संकट, सीमित उद्योग और कमजोर बुनियादी ढांचे जैसे चुनौतियों से जूझ रहा था। लेकिन आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में भारत ने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है।
0: बिल्कुल।
1: कृषि उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बना है और इसी के साथ जागृति जी सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों का तेजी से विस्तार हुआ है। यह सब दर्शाता है श्रोता साथियों कि भारत विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
0: जी
1: लेकिन
0: हाँ।
1: अभी भी मंजिल बाकी है और यही कारण है कि विकसित भारत का संकल्प महत्वपूर्ण बन जाता है।
0: जी हाँ अंजलि, विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण आधार आत्मनिर्भरता भी है। जब देश अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं करने लगे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लगे तब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। श्रोता साथियों, कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में निरंतर सुधार भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं।
1: जी जी।
0: स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, उद्यमिता को प्रोत्साहन करना और नवाचारों को अपनाना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है अंजलि।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में किसानों की भूमिका बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: यदि किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे कहना चाहेंगे कि आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई सुविधा, उचित मूल्य और कृषि शिक्षा के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा अंजलि जब गांव और किसान दोनों खुशहाल होंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, हम यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि यदि किसी देश को वास्तव में विकसित बनना है तो उसकी शुरुआत शिक्षा से करनी होगी।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षा केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। एक शिक्षित समाज जागरूक होता है, वैज्ञानिक सोच रखता है, अंधविश्वास से दूर रहता है और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझता है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब गांव से लेकर शहर तक हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि विकसित भारत एक नारा नहीं एक संकल्प है।
1: बिल्कुल।
0: ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों के साथ में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, यही बात करना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि अक्सर लोग सोचते हैं कि देश का विकास केवल सरकार का काम है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन सच्चाई ये है कि विकास में हर नागरिक की भूमिका होती है। हम अपने स्तर पर कानूनों का पालन करें, करों का ईमानदारी से भुगतान करें, स्वच्छता बनाए रखें, बेटियों को शिक्षा दें, पर्यावरण की रक्षा करें और सामाजिक सद्भावना बनाए रखें। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कह सकते हैं जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से कि विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण आधार आत्मनिर्भरता है। जब देश अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करने में सक्षम होता है, तब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि नवाचार, शोध और स्थानीय क्षमताओं को बढ़ावा देना भी है। स्थानीय उत्पादों को अपनाकर और स्थानीय उद्यमों को समर्थन देकर हम भी इस दिशा में योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, आज का युग विज्ञान का युग है और तकनीक का युग है। विकसित देशों की सफलता का एक बड़ा कारण उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी विकास है।
0: बिल्कुल।
1: भारत ने अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, चिकित्सा और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। हम कह सकते हैं कि तकनीक का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। भविष्य का विकसित भारत विज्ञान और नवाचार पर आधारित है। श्रोताओं, इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है अंजलि। यदि विकास के नाम पर प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया जाएगा तो भविष्य संकट में पड़ जाएगा।
0: जी हाँ।
1: विकसित भारत का अर्थ स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, हरित वातावरण, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग भी है। हमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता को अपनी आदत बनाना होगा।
0: बिल्कुल। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से जागृति जी कि विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं आता।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि सामाजिक एकता से भी आता है। यदि समाज जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बटा रहेगा तो विकास की गति प्रभावित होगी।
1: जी हाँ।
0: विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, विविधता को अपनी ताकत माने, सहयोग और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा दें। एकजुट समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। कहना चाहेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि विकसित भारत कोई ऐसा सपना नहीं है जिसे केवल सरकारें पूरा करेंगी और नागरिक दर्शक बनकर देखते रहेंगे। यह एक साझा जिम्मेदारी है, एक सामूहिक यात्रा है और सबसे बढ़कर एक राष्ट्रीय संकल्प है।
1: जी हाँ।
0: जब एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, जब एक किसान पूरी मेहनत से अन्न उगाता है, जब एक युवा अपने कौशल को निखारता है, जब एक महिला आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है, तब जागृति जी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा होता है।
1: बिल्कुल।
0: तब विकसित भारत की नींव और अधिक मजबूत होती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि देश का विकास केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक नागरिक की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से कर भुगतान करना, कानून का पालन करना, स्वच्छता बनाए रखना, मतदान करना और समाज के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करना विकसित भारत की दिशा में योगदान है।
0: बिल्कुल।
1: जब नागरिक अपने कर्तव्यों को समझेंगे श्रोताओं और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देंगे, तब विकास की गति और तेज हो जाएगी। हालांकि हम देखते हैं कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, फिर भी कई चुनौतियां हमारे सामने मौजूद है अंजलि। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं विकास की गति को प्रभावित करती है। श्रोताओं, इन चुनौतियों का समाधान केवल नीतियों से नहीं बल्कि जन भागीदारी, जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से संभव है। हमें समस्याओं की चर्चा से अधिक उनके समाधानों पर ध्यान देना होगा।
0: जी हाँ जागृति जी, हमें ये भी याद रखना होगा कि विकसित भारत किसी एक दिन, एक योजना या एक घोषणा से नहीं बनेगा। यह करोड़ों लोगों के छोटे छोटे प्रयासों, सकारात्मक सोच, जिम्मेदार व्यवहार और राष्ट्र के प्रति समर्पण से बनेगा। श्रोता साथियों, हम ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जहां प्रगति के साथ संवेदनशीलता हो, आधुनिकता के साथ संस्कार हो और प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग हो।
1: बिल्कुल।
0: और विकास के साथ मानवता भी जीवित रहे। यही वह दृष्टि है जो भारत को केवल विकसित राष्ट्र नहीं बल्कि विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बना सकती है। विकसित भारत का भविष्य किसी और के हाथों में नहीं बल्कि हम सभी के आज के निर्णयों, प्रयासों में छिपा हुआ है। यही संकल्प हमारी जागृति जी सबसे बड़ी शक्ति है और यही हमारे उज्जवल कल की सबसे मजबूत आधारशिला भी है।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है विकसित भारत को लेकर, कुछ बातें रह गई है वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि विकसित भारत वास्तव में कोई साधारण नारा नहीं है, बल्कि कई करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। ये संकल्प एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का है अंजलि, जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक रूप से उन्नत और नैतिक रूप से श्रेष्ठ है।
1: जी जी।
0: आज आवश्यकता इस बात की श्रोता साथियों कि हम केवल विकसित भारत की बात न करें बल्कि उसके लिए कार्य भी करें। जब हर नागरिक अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करेगा, जब युवा अपने सपनों को राष्ट्र के सपनों से जोड़ेंगे, जब शिक्षा, विज्ञान, कृषि और पर्यावरण को समान महत्व मिलेगा, तब विकसित भारत का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा।
1: जी जी।
0: विकसित भारत कोई दूर का सपना नहीं श्रोताओं, ये हमारे विचारों, कर्मों और संकल्पों में निर्मित होने वाला भविष्य है। हम सब मिलकर ये ठान सकते हैं कि हम अपने देश को विकास, समृद्धि और मानवता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान जरूर देंगे। इसलिए कहा गया है कि विकसित भारत केवल शब्दों का शोर नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य का संकल्प है। इसलिए हम ऐसे भारत का निर्माण करें जहां अवसर सबके लिए हो, सम्मान सबका हो और विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे।

0: जब हर भारतीय कहेगा कि देश का विकास मेरी जिम्मेदारी है, तभी विकसित भारत का सपना हकीकत बनेगा।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत रही कि विकसित भारत एक नारा नहीं संकल्प है। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं श्रोता साथियों हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था गा
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: कार्यक्रम घूमर हमारा वारी अमर हित बुने ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। हवे बोनो आप सब सांभळी रह्या हो आपणू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: हवे बोने लीने हाजिर थी गया हूँ कार्यक्रम घूमर ने लीने एक नया विषय ने हाथे जेम के मनीषा बोन आपणे दर बुधवार ने दर शनिवार हाजिर थी जा एक नया विषय ने हाथे। आज आपणे कार्यक्रम में भाईन बोनो थकी बातचीत नो विषय है कि आपणी बोनोमी कमजोरी ने समस्या ना हूँ कारण है ने समाधान बल्लई घरेलू उपाय हूँ अपनावी शकी। बाइन बोनो केवू चाहूंगा कि आज ना टाइम में आपणी जे बोने है ई हेतो दाड़ो काम करे है परिवार ने देखभाल सोरू नु ध्यान खेती नु काम नौकरी इनमें एना ने सेहत नु ध्यान राखवानो टाइम एना ने नथी मिली पातो। एने परिणाम स्वरूप आपणे देखो कि एना ने शरीर में कमजोरी थकान ने ऊर्जा नी कमी महसूस एना ने थाय है। आज आपणे ई जाणंगा કે આપણે બોનમે કમજોરી ના હું કારણ હે ને ઘરેલુ ઉપાય ને માધ્યમ થકી ઈ અણી સમસ્યા તકી હરતે બચી શકે।
0: હવે અંજલિ બોન તો અણા વિશે માતે આપણે બોને ખતી ઘણા આકાની વાતે રેંગા અબર હમળા અગીત ને મોરે કર આપણી વાતે।
1: હવે તો બોને આપ હમળતો રહેશું આપણો રેડિયો આપણી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માતે।

0: नगर रेडिओ 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिनकोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बलदे आप मने फोन करी शको अमारे आना फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234।
1: तो भाई बोनो फेरे मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टाइम माते एक ना विषय ने हाते दारू दी।
0: राम राम राम राम, राम, राम, राम, राम, राम।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन तक की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके,
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। साथियों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता ही है, और वो है निराशा। साथियों, कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे, हमारे सपने दूर लग रहे हैं और लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, निराशा केवल क्षणिक भावना है और इससे बाहर निकलने का रास्ता हमारे भीतर ही है। जब अंधेरा गहरा होता है दोस्तों, तो खुद पर भरोसा रखो, सूरज फिर उगेगा। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे साथियों कि निराशा से बाहर हम कैसे आए। बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो सभी के जीवन में कभी न कभी आता है, और वो है निराशा। और निराशा से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, आपने कभी सोचा है कि हम क्यों निराश होते हैं? बताना चाहूंगी दोस्तों कि कभी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं, या फिर कभी कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं तो कभी हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं, कभी हमारे पास सही मार्गदर्शन भी नहीं होता। लेकिन साथियों, निराशा जीवन का अंत नहीं है, यह केवल हमें सोचने और सुधारने का संकेत देती है। असफलता केवल मार्गदर्शक होती है साथियों, लेकिन निराशा स्थायी नहीं होती। साथियों, ध्यान दीजिए कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद अवसर भी तो आता है ना। कभी कभी ना साथियों, हम बहुत छोटे परिणामों से निराश हो जाते हैं, लेकिन छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। साथियों, एक बात बताइए कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपके मन के मुताबिक नहीं आ रहे? यह सोच कर एक पल रुकिए और सोचिए कि कैसे आपने इस स्थिति से सीखा। जी हाँ दोस्तों, हर निराशा में छिपा होता है एक सीख और एक नया अवसर, जिसे बस हमें समझने की जरूरत होती है। यही मैं एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है उसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि निराशा केवल एक चुनौती है, अवसर नहीं। जी हाँ श्रोता साथियों, एक युवक था रोहित। वह अपने करियर में बहुत उत्साही था, लेकिन लगातार असफल होता रहा। हर नौकरी में रिजेक्ट, हर प्रयास में विफलता। धीरे धीरे रोहित निराश हो गया। वह सोचने लगा दोस्तों कि शायद मैं कभी सफल ही नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास एक मित्र था। उसने रोहित से कहा कि असफलताएं तुम्हारा अंत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें सही राह दिखाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। फिर दोस्तों, रोहित ने अपनी गलती और स्थिति को समझा। उसने अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटा प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह अपनी पसंद की नौकरी में सफल हुआ। तो साथियों, ये हमें कहानी सिखाती है कि जो गिरकर उठना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हमें भी हमारे जीवन में ऐसा ही करना चाहिए कि हमें हमारी जो असफलताएं हैं, हमारी जो स्थिति है, उनसे बहुत सारी सीख मिल सकती है। और जब हम हमारे जीवन की कठिनाइयों को समझ जाते हैं, हमारी असफलता के पीछे के कारण को समझ जाते हैं ना साथियों, तो हम उन सारी चीजों में सुधार कर जीवन में नए मार्ग को अपना पाते हैं। यही श्रोता साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है? अगर साथियों आप मेरी इस बात का जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। श्रोता साथियों, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं मनोरंजन करवाना चाहूंगी आपको एक प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपसे सवाल किया ही था कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है। इस बात का जवाब श्रोता साथियों जब आप हमें देंगे ना, तो हमारे बहुत से दूसरे जो श्रोता साथी हैं, उन्हें भी अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करना और निराशा से किस तरीके से दूर रहते हैं ये सारी सीख मिल पाएगी। अब यही मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगी जिससे हम निराशा से बाहर निकल सकते हैं। साथियों, निराशा से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है खुद पर भरोसा रखें, यानी कि आपकी ताकत आपकी सोच में है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, आपकी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो आप हर निराशा से दूर रह सकते हैं। इसी के साथ जीवन में छोटे लक्ष्य बनाएं। हर छोटे कदम साथियों मनोबल बढ़ाते हैं। अच्छे मित्र और अच्छे लोगों के साथ जुड़े ताकि आपका जो जीवन है वो भी अच्छा बना रहे। और श्रोता साथियों, जीवन की सबसे बड़ी जो बात है वो हर किसी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, वो है धैर्य। धैर्य जिस व्यक्ति के अंदर है, वह व्यक्ति जीवन की हर समस्याओं हर कठिनाइयों से दूर रह सकता है। साथियों, कहना चाहूंगी हर निराशा में छिपा होता है एक सबक और एक नया अवसर। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात ये आती है साथियों कि अंधेरा जितना गहरा होता है ना, रोशनी उतनी ही तेज दिखाई देती है। हर कठिनाई हमारी ताकत बन सकती है अगर हम चाहें तो। कभी कभी दोस्तों हमें लगता है ना कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल भी हमसे बहुत दूर है और ताकत कम है। तब हमें ये याद रखना है कि हर सफल इंसान कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन उसने कदम रोकने के बजाय और मेहनत की। साथियों, जरा सोचिए कि यदि महान वैज्ञानिक, लेखक, खिलाड़ी और बिजनेस लीडर निराशा में ही रुक जाते तो आज हम उनके योगदान से वंचित रह जाते। इसलिए कभी अपने सपनों को मत छोड़ो, कभी अपने प्रयासों को कम मत आंको और कभी निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जीतता वही है जो गिर कर भी उठता है। हमें ये भी सोचना चाहिए दोस्तों कि सफलता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सच यह है कि बड़ी मंजिल भी छोटे कदमों से ही पूरी होती है। हर दिन जब हम छोटा प्रयास करेंगे, हर छोटे कदम निरंतर रखते रहेंगे और उन चीजों से नई सीख लेते रहेंगे, तो हम सफल अवश्य होंगे। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि अपने जीवन में एक छोटा कदम क्या उठा सकते हैं जो आपकी निराशा को दूर करे और आपके सपनों को करीब ले जाए। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। खुद पर भरोसा ही आपको निराशा से बाहर ले जाएगा। खुद पर भरोसा ही आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस देगा। जब आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, जब आप सोचेंगे कि कठिनाइयाँ केवल अवसर है, जब आप सोचेंगे कि हर गिरावट से मैं मजबूत बनूंगा, तो निराशा आपके पास टिक ही नहीं पाएगी। तो साथियों, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि निराशा से हम दूर कैसे रह सकते हैं। बातें कार्यक्रम में ढेर सारी हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहूंगी।

साथियों, आज हमने जाना कि निराशा जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे बाहर निकलना हमारे ही हाथ में है। जब हिम्मत और प्रयास साथ हो तो निराशा कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए याद रखिए कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद अवसर आता है। इसलिए निराशा में डूबने के बजाय एक कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। इसी संदेश के साथ आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhara.org, radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय हमारे जीवन से जुड़े एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: बोला संडे की बना दी तुमने।
1: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
1: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में हम एक नए विषय को लेकर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कशिश, जो मानवता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारियों का सबसे सुंदर उदाहरण है।
1: बिल्कुल,
2: हमारा आज कार्यक्रम का विषय है रक्तदाता के महत्व को लेकर। हम देखते हैं कशिश के कल 14 जून है और कल ही के दिन ये दिवस मनाया जाएगा और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ जो है सोमवार से शनिवार तक आता है।
1: जी हाँ,
2: हम कल हमारे श्रोता साथियों के साथ सीधा प्रसारण कार्यक्रम में रूबरू नहीं हो पाएंगे। आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि रक्तदाता का क्या महत्व है और किस तरीके से हम सभी को रक्तदान करना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो इसी विषय को लेकर आज हमारी श्रोता साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें होने वाली है।
2: बिल्कुल,
1: और हम उम्मीद करेंगे कि ये बातें हमारे साथियों को जरूर पसंद भी आएंगी क्योंकि आज का विषय ही श्रोता साथियों काफी महत्वपूर्ण है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम शुरुआत में आपको गीत संगीत के साथ पहले मनोरंजन करवाते हैं।
2: जी हाँ,
1: तो क्यों ना आज भी शुरुआत पहले एक प्यारे से गीत के साथ हम करें अंजलि जी।
2: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं रक्तदान के महत्व को लेकर और रक्तदाता दिवस को लेकर।
1: जी हाँ
0: अंजलि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये दिवस वैसे तो 14 जून को मनाया जाता है, लेकिन साथियों जैसा कि हमने आपको बताया कि कल रविवार का दिन है और कल सीधा प्रसारण हमारा आपसे नहीं हो पाएगा। कह सकते हैं दोस्तों, अगर बात करें इस विषय को लेकर तो देखते हैं कि रक्तदाता दिवस मनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया जाए।
1: जी जी,
0: जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं कि यह दिन उन लाखों स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना रक्त दान करके दूसरों को नया जीवन देते हैं। अंजलि जी, क्योंकि रक्तदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये मानवता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक है।
1: बिल्कुल कशिश, हम सभी जानते हैं कि धन, वस्त्र, भोजन और अन्य वस्तुएं दान की जा सकती हैं, लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जिसे कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता।
0: जी जी,
1: इसका कोई कारखाना नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है। जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है तब केवल एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदान ही उसकी मदद करता है।
0: बिल्कुल,
1: यही कारण है कि रक्तदाता समाज के लिए किसी देवदूत से कम नहीं होते।
0: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हमारे साथियों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे शरीर में बहने वाला रक्त जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि रक्त हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन और पोषण तत्व पहुंचाता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि अंजलि जी किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए, किसी बच्चे को गंभीर बीमारी हो जाए या साथियों किसी मरीज का बड़ा ऑपरेशन होना हो, तो ऐसे में रक्त की बहुत सख्त आवश्यकता होती है।
1: जी जी,
0: दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी कृत्रिम पदार्थ नहीं है श्रोता साथियों जो मानव रक्त की पूर्ति कर सके। इसलिए रक्त की जरूरत पड़ने पर केवल मानव का रक्त ही दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है जिससे उसकी जान बच सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, हमारे शरीर में बहने वाला रक्त जीवन का आधार होता है। यह शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, जैसा कि आपने अभी बताया।
0: जी जी,
1: यही किसी कारणवश शरीर से अत्यधिक रक्त निकल जाए तो व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है। दुर्घटनाएं, बड़ी सर्जरी, प्रसव के दौरान होने वाला रक्तस्राव, कैंसर, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कई अन्य बीमारियों में मरीज को रक्त की आवश्यकता पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में रक्तदाता ही आशा की किरण बनकर सामने आते हैं। रक्तदाता वह व्यक्ति होता है जो स्वेच्छा से अपना रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दान करता है।
0: जी हाँ,
1: वह किसी पहचान, जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र को नहीं देखता। उसका उद्देश्य केवल एक होता है, किसी की जान बचाना।
0: बिल्कुल,
1: रक्तदाता यह नहीं जानता कि उसका रक्त किसी के शरीर में जाएगा, लेकिन यह वह जरूर जानता है कि इससे एक छोटे से प्रयास से किसी परिवार की खुशियां वापस लौट सकती है।
0: जी बिल्कुल,
1: कई बार हम देखते हैं कशिश कि हम समाज के बड़े बड़े अवसरों की तलाश करते हैं, लेकिन रक्तदान एक ऐसा कार्य है जिसे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आसानी से कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को तुरंत रक्त की आवश्यकता है, अस्पताल में रक्त उपलब्ध नहीं है। ऐसे समय में यदि कोई रक्तदाता आगे आता है तो वह केवल रक्त नहीं देता बल्कि किसी की जिंदगी, किसी की माँ, बेटा, किसी के बच्चे का पिता या किसी परिवार की उम्मीद बचा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा जाता है रक्तदान महादान है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, अब यहीं अगर बात करें तो यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से विश्व भर में कल मनाया जाएगा। हम देखेंगे कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है श्रोता साथियों कि लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाए, सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करना भी एक उद्देश्य है अंजलि जी इस दिवस को मनाने का। हम देखते हैं कि रक्तदान को लेकर कई लोगों के कुछ भ्रम और डर रहते हैं, उन्हें दूर करना भी इस दिवस को मनाने का एक उद्देश्य है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम रक्तदाता के महत्व को लेकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं, तो श्रोता साथियों, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियमित रूप से रक्तदान करते हैं। वे केवल विशेष अवसरों पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष जरूरतमंदों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे रक्तदाता समाज में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करते हैं। वे लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं, भ्रांतियों को दूर करते हैं और दूसरों को भी इस अभियान से जोड़ते हैं। उसकी वजह से अस्पतालों और ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता बनी रहती है और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर सहायता भी मिल पाती है। हम देखते हैं कशिश के प्रसव के दौरान कई महिलाओं को अचानक रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि समय पर रक्त न मिले तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसी प्रकार थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को जीवन भर नियमित अंतराल पर रक्त चढ़ाना पड़ता है। उनके लिए रक्तदाता किसी वरदान से कम नहीं होते। रक्तदाता का नियमित योगदान कई बच्चों और परिजनों के लिए जीवन में खुशियां बनाए रखने में मदद कर सकता है।
1: जी हाँ दिलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे में ये कहा भी जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को जीवन दान दिया जाए तो उससे बड़ा कोई दान नहीं होता।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, रक्तदान ऐसा दान है जिसमें दान करने वाले को कुछ भी नुकसान नहीं होता, लेकिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन जरूर मिल सकता है। जैसे कि साथियों, कल्पना कीजिए कि किसी अस्पताल में एक मरीज है जो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है।
0: जी जी,
1: ऐसे में अंजलि जी, डॉक्टरों का कहना है कि तुरंत रक्त की आवश्यकता है। देख सकते हैं कि किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा उस समय किया गया रक्तदान उस व्यक्ति के परिवार के लिए किसी देवदूत के समान साबित हो सकता है। श्रोता साथियों, ये दिवस हमें ये सिखाता है कि मानवता की कोई जाति, धर्म, भाषा या सीमा नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: रक्त का रंग सबका एक जैसा होता है और जीवन भी सबके लिए समान रूप से मूल्यवान है।
0: जी हाँ कशिश, प्राकृतिक आपदाएं, सड़क दुर्घटनाएं, आगजनी या अन्य आपात स्थितियों में अचानक बड़ी मात्रा में रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे समय में स्वैच्छिक रक्तदाता सबसे पहले सहायता के लिए आगे आते हैं। वे संकट की घड़ी में समाज की ताकत बनते हैं और ये साबित करते हैं कि मानवता आज भी जीवित है। रक्तदाता हमें सिखाते हैं कि इंसानियत केवल शब्दों में नहीं बल्कि कामों में दिखाई देती है। वे बताते हैं कि किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर से कुछ मिनट निकाल कर किसी को नया जीवन दे सकता है।
1: जी हाँ,
0: रक्तदाता समाज में सहयोग, भाईचारे, संवेदनशीलता और सामाजिक एकता की भावनाओं को भी मजबूत बनाते हैं। हम देखते हैं कि आज भी बहुत से लोग रक्तदान को लेकर गलत धारणाएं रखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा या स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: वास्तविकता कशिश यह नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सुरक्षित तरीके से किया गया रक्तदान जो होता है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। शरीर कुछ ही समय में खोए हुए रक्त की पूर्ति कर लेता है और डॉक्टर की देखरेख में किया गया रक्तदान न केवल सुरक्षित है बल्कि श्रोता साथियों, कई लोगों के लिए जीवन की रक्षा करने का माध्यम भी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम ये बताना चाहेंगे कि समाज में रक्तदान के लिए ढेर सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि रक्त देना सही बात नहीं होती है या फिर रक्त देने से लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन हमारे दोस्तों से हम यहाँ पर कहना चाहेंगे अंजलि जी कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि रक्तदान के बाद काम करने की क्षमता कम हो जाती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त होता है। ऐसे में रक्तदान के दौरान केवल एक सीमित मात्रा में रक्त लिया जाता है।
0: जी जी,
1: जिसकी भरपाई शरीर कुछ ही दिनों में पूरी कर लेता है। ऐसे में संतुलित भोजन और पर्याप्त मात्रा में पानी लेने से व्यक्ति सामान्य रूप से अपने सभी कार्य कर सकता है। इसी के साथ श्रोता साथियों, नियमित अंतराल पर दिए गए रक्तदान से खून की स्थायी कमी भी नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि बहुत से लोग बात करते हैं कि अगर बार बार रक्तदान हम करेंगे तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी। लेकिन साथियों, रक्तदान हमें हर महीने नहीं करना होता। हमें रक्तदान कुछ अंतराल, जैसे कि पुरुषों को 3 महीने में और महिलाओं को 4 महीने के अंतराल में करना चाहिए अंजलि जी। इसी के साथ साथियों, जब हम रक्तदान करते हैं तो पहले डॉक्टर हमारी आयु, वजन, हीमोग्लोबिन का स्तर और स्वास्थ्य की पहले जांच कर लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि सब कुछ सामान्य होता है अंजलि जी, तभी रक्तदान करने की इजाजत हमें मिलती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। यदि युवा वर्ग रक्तदान को एक सामाजिक आंदोलन बना ले तो देश में रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: कॉलेज, विद्यालय, सामाजिक संगठन और युवा समूह मिलकर रक्तदान शिविर आयोजित कर सकते हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: जब युवा आगे आते हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन की गति तेज हो जाती है। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कशिश श्रोता साथियों को कि समाचारों में अक्सर सैनिकों, खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की चर्चा होती है, लेकिन हजारों रक्तदाता ऐसे भी हैं जो बिना किसी पुरस्कार और प्रसिद्धि की इच्छा के लगातार लोगों की जान बचाने का कार्य करते हैं। वे इस मंच पर सम्मान पाने के लिए नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए रक्तदान करते हैं। यही कारण है कि उन्हें समाज का अनदेखा नायक कहा जाता है। उनके योगदान का मूल्य केवल वही परिवार समझ सकता है जिनकी किसी प्रियजन को रक्त मिलने के कारण जीवनदान मिला हो।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें हमारी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे कार्यक्रम के माध्यम से रहेंगी हमारी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें हम।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों रक्तदान को लेकर और रक्तदाता दिवस को लेकर ढेर सारी बातें गीत से पहले भी हमारी आपसे चल रही थी,
1: बिल्कुल
0: इसी बीच अंजलि जी हमारे साथियों से हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों रक्तदान के बाद हमें पर्याप्त पानी पीना चाहिए और साथ ही पौष्टिक भोजन लेना चाहिए और कुछ ही घंटों तक भारी शारीरिक कार्य से भी बचना चाहिए।
1: जी जी,
0: क्योंकि देखते हैं कि रक्तदान करने के बाद हमारे शरीर को फिर से रक्त की पूर्ति करनी होती है, जिसके कारण उसे पौष्टिक जो भोजन है उसकी आवश्यकता होती है। इसी के साथ अगर रक्त के प्रकारों की बात करें अंजलि जी, तो रक्त के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे कि ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव। दोस्तों अगर बात करें ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव की, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो ओ नेगेटिव होता है रक्त का प्रकार, वो सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ये सभी रक्त समूह को रक्त दे सकता है साथियों, लेकिन स्वयं केवल ओ नेगेटिव से ही रक्त ले सकता है।
1: जी जी।
0: वहीं जो एबी पॉजिटिव है ये भी सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, लेकिन रक्त केवल एबी पॉजिटिव को ही दे सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ रक्त के प्रकार होते हैं जिन सभी के बारे में हमारे श्रोता साथियों को जानकारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल कशिश, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि जरा सोचिए, यदि आपके किसी अपने को अचानक रक्त की आवश्यकता पड़ जाए और रक्त उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति जो होती है वो बहुत कठिन होती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए आज किसी अजनबी के लिए किया गया रक्तदान कल किसी अपने के लिए जीवन की सुरक्षा बन सकता है। रक्तदान केवल रक्त देना नहीं है, बल्कि आशा देना, मुस्कान देना, किसी परिवार को टूटने से बचाना और मानवता को मजबूत बनाना है।
0: जी हाँ।
1: हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, भ्रांतियों को दूर करेंगे और जब भी संभव होगा स्वैच्छिक रक्तदान करके मानव जीवन की रक्षा में अपना योगदान देंगे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि किसी की धड़कनों को जारी रखने से बड़ा कोई उपहार नहीं है और किसी के जीवन में उम्मीद लौटाने से बड़ी कोई सेवा नहीं है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, जैसा कि कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि रक्तदाता कौन होता है और किस तरीके से उसका महत्व है, तो कहानी के माध्यम से कशिश अब हम जानते हैं कि रक्तदान का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
0: जी हाँ।
1: तो श्रोता साथियों, कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन रक्तदान के बारे में उसकी सोच आम लोगों जैसी नहीं थी।
0: जी हाँ।
1: गांव में जब भी रक्तदान शिविर लगता, वह कहता कि मुझे क्या जरूरत है रक्तदान करने की, रक्त देने से कमजोरी आ जाती है। उसका बेटा जो था वो मोहन कई बार उसे समझाता, लेकिन रमेश अपनी बात पर अड़ा रहता। एक दिन गांव के पास सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि युवक को तुरंत रक्त की आवश्यकता है। युवक के परिवार वाले परेशान थे, अस्पताल के ब्लड बैंक में उस समय उस समूह का रक्त उपलब्ध नहीं था।
0: जी हाँ।
1: जैसा कि हम जान पाए कार्यक्रम के माध्यम से, तो श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि गांव के ही एक जो शिक्षक थे सुरेश जी, तुरंत अस्पताल पहुंचे और उन्होंने रक्तदान किया और उसके रक्त से युवक को जान मिल गई। कुछ दिनों बाद युवक जो है वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट आया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और वे बार बार सुरेश जी को धन्यवाद दे रहे थे।
0: जी हाँ।
1: यह दृश्य देखकर रमेश सोच में पड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि रक्तदान केवल रक्त देना नहीं बल्कि किसी के परिवार की खुशियां बचाना है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन साथियों, कहानी यही खत्म नहीं हुई है। कुछ महीनों बाद रमेश की पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। उसे शहर के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान रक्त की आवश्यकता पड़ी। रमेश घबरा गया, उसे लगा कि अब क्या होगा। तभी अस्पताल के ब्लड बैंक से रक्त जो है वो उपलब्ध हो गया।
0: बिल्कुल।
1: रक्त किसी ऐसे व्यक्ति ने दान किया था कशिश, जिसे रमेश जानता भी नहीं था। ऑपरेशन सफल रहा और उसकी पत्नी सुरक्षित घर लौट आई। हम देखते हैं कि उस रात रमेश कशिश देर रात तक सो नहीं पाया।
0: जी जी।
1: उसे सुरेश जी की बात याद आई, रक्तदान का मतलब किसी अनजान व्यक्ति के लिए वह करना जो आप अपने परिवार के लिए चाहते हैं। अगले ही महीने गांव में फिर रक्तदान शिविर लगा। इस बार सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति था रमेश। जब लोग हैरान हुए तो उसने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं सोचता था कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, लेकिन अब समझ गया कि रक्तदान कमजोरी नहीं, इंसानियत की ताकत है।
0: जी हाँ।
1: आज मैं किसी अजनबी के लिए रक्त दे रहा हूँ, कल कोई अजनबी मेरे परिवार के लिए रक्त देगा। रमेश ने रक्तदान किया। उसके बाद उसने गांव में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वह स्कूलों, पंचायतों, बैठकों और चौपालों में जाकर लोगों को रक्तदान के महत्व के बारे में बताने लगा।
0: बिल्कुल।
1: धीरे धीरे गाँव में बदलाव आने लगा। पहले जहाँ रक्तदान शिविर में मुश्किल से 10 लोग आते थे, अब दर्जनों लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने लगे। फिर एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, रमेश तुमने गांव में बहुत बड़ी बदलाव लाया है और बहुत बड़ी सीख दी है लोगों को।
0: जी हाँ।
1: रमेश मुस्कुराया और बोला, सीख मैंने नहीं दी, सीख तो जीवन ने दी है। जब तक रक्त की जरूरत अपने घर में नहीं आती, तब तक लोग उसकी कीमत नहीं समझते। लेकिन
0: हाँ।
1: समझदार वही है जो जरूरत आने से पहले ही दूसरों के लिए आगे बढ़ जाए।
0: बिल्कुल।
1: तो साथियों, ये कहानी हमें सीख देती है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान व्यक्तियों कई अलग व्यक्तियों की जान बचा सकता है। रक्तदान सुरक्षित मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है।
0: जी
1: रक्तदान
0: हाँ।
1: केवल एक दान नहीं है, बल्कि जीवन बचाने का संकल्प भी है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रक्तदान केवल एक चिकित्सक प्रक्रिया नहीं है साथियों, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है।
1: बिल्कुल।
0: समाज में फैली भ्रांतियां जानकारी के अभाव से जन्म लेती है और सही जानकारी श्रोता साथियों जागरूकता और सकारात्मक सोच के माध्यम से इन गलत धारणाओं को दूर कर सकती है।
1: जी जी।
0: श्रोता साथियों, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान के लिए प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा रक्त किसी के जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है। दोस्तों
1: जी जी,
0: रक्तदान करें जीवन बचाएं, ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि अंजलि जी मानवता के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है और आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने कहानी के माध्यम से रक्तदान के महत्व के बारे में जाना, अब यही बात करें तो श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि रक्तदान को केवल आपातकालीन जरूरत से जोड़कर न देखा जाए, बल्कि इसे एक नियमित सामाजिक संस्कार के रूप में अपनाया जाए। जब समाज में कशिश सभी लोग स्वैच्छिक रक्तदान की संस्कृति को विकसित कर पाएंगे, तब किसी मरीज के परिवार को अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही किसी की जिंदगी केवल रक्त की अनुपलब्धता के कारण खतरे में पड़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: जागरूक नागरिक, सक्रिय युवा, शिक्षण संस्थान, सामाजिक संगठन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर इस दिशा में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, अब यही अगर बात करें कि हमारे युवा साथियों के लिए रक्तदान का किस प्रकार से महत्व है, तो साथियों देश की जो युवा शक्ति है वो रक्तदान अभियान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यदि युवा नियमित रूप से रक्तदान करेंगे अंजलि जी, तो अस्पतालों में रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों को समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित करने चाहिए, ताकि युवाओं को सोशल मीडिया और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से भी रक्तदान के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि अक्सर यह माना जाता है कि महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती, जबकि जो स्वस्थ महिलाएं हैं वो भी चिकित्सीय मानकों के अनुसार रक्तदान कर सकती हैं।
0: बिल्कुल
1: साथियों, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से रक्तदान अभियान और भी अधिक मजबूत बन सकता है, ऐसा हम देखेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, किसी भी सभ्य और संवेदनशील समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वहाँ लोग एक दूसरे के सुख दुख में कितनी भागीदारी निभाते हैं। रक्तदाता इसी सामाजिक संवेदनशीलता की सबसे उज्ज्वल प्रतीक है। वे यह साबित करते हैं कि इंसानियत आज भी हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करता है तो वह केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि वह आशा, विश्वास और जीवन के संरक्षण की एक महान श्रृंखला को आगे बढ़ाता है।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में बढ़ती दुर्घटनाओं, जटिल बीमारियों और आपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षित रक्त की उपलब्धता एक बड़ी आवश्यकता बन चुकी है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में प्रत्येक जागरूक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि समाज का अधिक से अधिक स्वस्थ वर्ग नियमित रक्तदान के लिए आगे आए, तो अनेक परिवारों को संकट की घड़ी में राहत मिल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: ये केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि लोगों के बीच सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावनाओं को भी बढ़ाएगा। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि रक्तदान हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े साधनों से नहीं आते, कई बार कुछ मिनटों का समय और सेवा एक छोटा सा भाव किसी के पूरे जीवन को दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि रक्तदाता समाज में प्रेरणा के स्रोत होते हैं। उनका उदाहरण नई पीढ़ी को निस्वार्थ सेवा, करुणा और सामाजिक सहभागिता का संदेश देता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसा
1: जी।
0: समाज बनाने का संकल्प लेकर शीश, जहाँ रक्त की कमी के कारण किसी की जिंदगी खतरे में न पड़े, जहाँ रक्तदान को केवल एक अभियान नहीं बल्कि सामाजिक संस्कृति का हिस्सा माना जाए, जहाँ हर व्यक्ति यह समझे कि उसके छोटे से योगदान से किसी के जीवन में नई सुबह आ जाती है। मानवता की यही भावना हमें एक दूसरे से जोड़ती है और एक बेहतर, सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण का मार्ग जो है वो प्रशस्त करती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि हमें रक्तदान को केवल एक विशेष दिवस तक सीमित नहीं रखना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: साथियों, इसे समाज की नियमित आदत हमें बनाना होगा। जिस प्रकार हम पेड़ लगाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं और समाज सेवा करते हैं, ठीक उसी प्रकार रक्तदान को भी सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा हमें बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अंजलि जी, एक स्वस्थ व्यक्ति वर्ष में निर्धारित अंतराल पर रक्तदान कर सकता है और अपने द्वारा अनेक लोगों का जीवन बचा सकता है।
0: जी हाँ साथियों, रक्तदान हमें यह सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मानवता है। रक्त का कोई धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक वर्ग नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: जब किसी जरूरतमंद को रक्त चढ़ाया जाता है, तब केवल जीवन बचता है और मानवता जीतती है। यही भावना एक बेहतर, अधिक संवेदनशील और अधिक मानवीय समाज की नींव रखती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए कहना चाहेंगे कि रक्त की हर एक बूंद में जीवन का संदेश है, किसी की सुनी सांसों में उम्मीदों का परिवेश है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई संकट में होता, जीवन से हारने लगता, रक्तदाता का छोटा सा दान तब नया उजियारा जगाता।
1: बिल्कुल,
0: एक बूंद से दीप जलेगा, एक जीवन फिर खिलेगा, मानवता की इस धरती पर प्रेम का फूल महक जाएगा। रक्तदान है महादान, यही हमारा हो अभिमान, किसी की धड़कन बन जाए, यही तो है जीवन का सम्मान।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इन्हीं बातों के साथ जैसा कि आज हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बातें हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को
0: नमस्कार।
1: साथी दोस्तों आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। हमारे इस नंबर पर हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंढरपुर से। फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर। गीत के बोल ही मेरा सनम सबसे प्यारा है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू और आशा जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है जाकिर मुलानी, समया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बाबा बी मुलानी, बादशाह हाजी मुलानी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रसाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति जी शाहू। सलार पलगाम से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नसमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़ी, करुणा मीना, अश्विन विपुल जी कामड़ी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरा सनम सबसे प्यारा है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू ने और आशा जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत की बोल है तू मुझे कबूल। इस गीत की फरमाइश करता है डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित सचिन, मास्टर समर राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही वर्मा, ऐशिका वर्मा, श्वेता जी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, भागवत सी, आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इस गीत के अनुरोध करता है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही जी मलिक। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। इस गीत के अनुरोध करता है कोका बलाई से उत्तम सिंह जंगिल, मोरस जंगिल, अनिल कुमार जंगिल, अजीत कुमार जंगिल, आरुषि जंगिल और नंदिनी जी जंगिल। सुकरी कला से जुड़ना चाह रहे हैं अमित सुकुन, आरुषि जंगिल, ओशिका जंगिल और अंजलि जी जंगिल। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है खंडवा मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है सनम बेवफा। गीत के बोल हैं चूड़ी मजा न देगी। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है बीबी सालिया डावर, बीबी हलीमा डावर, बीबी जिक्रा डावर, आयशा खत्री। धर्मपुरी से जुड़ रहे हैं मूषा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर जी खत्री। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहिटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कोश जी मुणत। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गाजियाबाद से शिषपाल जी। इस गीत की अनुरोध करता है मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू भाई, युवराज सिंह और शिवांगी जी। बाबा कुटरी रायगढ़ से जुड़ रहे हैं शिव कुमार चौहान, आशिक संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान और डुग्गू जी। छत्रपति शिवाजी नगर से जुड़ना चाह रहे हैं राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन और अक्षय जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका वानी जी थांदी। इस गीत की अनुरोध करता है जमशेदपुर से हरमिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चूड़ी मजा न देगी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों, इस गीत की बात बढ़ते ही अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है हरे राम हरे कृष्ण। गीत के बोल हैं काची रे काची। इस गीत की फरमाइश करता है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा और शिवांशी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत के अनुरोध करता है सहारनपुरा से समित मशरूम, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम जी, सदाम जी, अदीपली जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाली खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी जी खेड़ा। इस गीत की अनुरोध करता है लोर में चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं काची रे काची। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत की फरमाइश करते हैं प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़की जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब जी और लड्डू जी। इस गीत के अनुरोध करता है बिहार से फैजल मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल जी, नफीजा जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुन्नाचार्य गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बेबी आरुषि श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुन्नाचार्य मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सोमो और मोनू मानस जी राज। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सुप्रील जी धाड़ी। इस गीत के अनुरोध करता है सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा, सार्थक जी शर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं गोरी है कलैया।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे गोरी है कलैया। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है खेल बाजार पानीपत से। फिल्म का नाम है शान, गीत के बोल हैं प्यार करने वाले जीते हैं शान से। इस गीत की फरमाइश करता है नरेश मल्होत्रा, निट्टू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ना चाह रही हैं पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र से विकास बंसोड़ी, रेखा बंसोड़ी, अदिति बंसोड़ी, विभवजीत सिंधी, खंडारा से जुड़ना चाह रही हैं आकाश सरोदी और प्रिया सरोदी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और हिमांश जी। कुंभार गली कोलगांव से जुड़ रही हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधान जी खुराना। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश की इस गीत को, गीत के बोल ही प्यार करने वाले जीते हैं शान से। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

मेजबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भोपालगढ़ राजस्थान से। फिल्म का नाम है बगावत, गीत के बोल हैं मेरे महबूब तुझे सलाम। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी जी ने और आशा जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी चीपा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मीराब जहाँ जी। इसी बीच जुनाचार्य सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामन शेंडी, शीला देवी शेंडी, सिद्धार्थ जी शेंडी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतिजी चौहान। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रही हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। मुरादाबाद से जुड़ रही हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य जी कसाना। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से शंकर, सुमन और भीरवेड़े जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंडपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही मेरे महबूब तुझे सलाम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अनारकली बाजार जगराओं से। फिल्म का नाम है खलनायक, गीत की बोल ही पालकी में होके सवार चली रही। इस गीत की फरमाइश करता है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोद पुरी जी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे। छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेमांश जी चंदन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पलाराग, तनुजा और ईशान जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से सुधाकर राजयादव, प्रशांत राजयादव, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी जी देशमुख, कुमारी कल्पना जी देशमुख। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पालकी में होके सवार चली रही। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम फिर से आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला जो है वो हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपनी फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना क्या है श्रोता साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला सुबह 11 बजे से बना हुआ है, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और अब आप इसे आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ ही, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। तो श्रोता साथियों, फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है साथियों कुम्भार गली श्रीरामपुर से। फिल्म का नाम है मृत्यु दंड, गीत के बोल हैं कह दो एक बार सजना। इस पारे से गीत को आवाज दी अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी ने। फरमाइशकर्ता श्रीरामपुर से पसंद करते हैं इस गीत को अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, इश्केत दले, जीविका दले, सानिका दले, पूनावले पुड़े से अजय सोनवाने, करिश्मा अविका विशाखा सोनवाने जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त गीत को सुनना चाह रहे हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं। बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी जी, अर्जुन भारती, अंजलि जी, नितिन जगमोहन, सुधुर नूतन, भुवनेश्वरी देवी जी। दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। वहीं पोटाकला दुर्ग से जुड़ना चाह रहे हैं संजय साहू, श्वेता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं कह दो एक बार सजना। तब तक आप बने रहिएगा वागल रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, कह दो एक बार सजना हे इतना क्या प्यार सजना, इसी गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है राजकोट से। फिल्म का नाम है राम लखन, गीत के बोल हैं बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने। इस गीत को लता मंगेशकर जी ने आवाज़ दी है और फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं राजकोट से मधुसूदन भट्ट जी, आरती भट्ट, जस्मीन प्रयागराज भट्ट। इसी बीच कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक शर्मा। और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले जी। नेहरू चौक पैठन से हैं सुदेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव। इसी बीच हमारे और भी दोस्त पसंद करते हैं इस गीत को, जुड़ रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाड़कर, निमल नवाड़कर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे जी और आशीष मुहेरकर जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल है बड़ा दुख देना तेरे लखन ने। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आइए, फिल्म का नाम है बंटवारा, गीत के बोल हैं थारे वास्ते रे ढोला। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं वसीम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरेश, सुषमा सुर से, प्रदेश सुरो से, मायरा सुरो से जी। इसी बीच श्रीरामपुर से जुड़ रहे हैं अशोक कुमार, गणेश, अविका जी, अविका जी विका सानू कुम्हार, अर्चना कुम्हार और अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शाइसा सोनवने जी। इसी बीच श्रोता साथी जुड़ रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से, नंदकिशोर गटे, संगीता गटे, साक्षी गटे, जयश्री मैत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टोहल, बीपी खुलथे जी। कुरावली से जुड़ना चाह रहे हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसीन अंसारी, नोरिन अंसारी, आसना मोहम्मद केफ अंसारी जी। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज जी, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहरितिक, बलवीर सिंह जी। गंजुटवारा से दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं और पसंद करते हैं इसी गीत को, मोहम्मद कलीम अंसारी, बेगम अयान अंसारी, जहीरा अंसारी जी और उस्मान अंसारी जी, यासिन हाशमी जी, शमशुल कमर राही। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं थारे वास्ते रे ढोला। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है दोस्तों छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत के बोल है ये गलिया ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, बेबी पूजा तामोरिया, राधिका प्रभा देवी तामोरिया और अल कबीर जी। अम्बाला हरियाणा से है रवि कुमार, राहुल, रंजीत करोर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीदर, गुदशब्द सिंह राहुल। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से है रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन जी। डुमराव से है वलीउल्ला अंसारी, अजमानाद अंसारी, शबनम बानो जी। बक्सर से एजिराज खातून अंसारी, फातिमा राज जी। छत्तीसगढ़ से देवशंकर और प्रभा देवी जयपुरिया। दिल्ली से माया राजोरा, रामेश्वरी रामेश्वर दास राजोरा। रायगढ़ बिहार से हैं उमा राज, उमा पवन, उमा संजय, उमा दीपक, उमा और कलम उमा। खंडवा से राधिका अनिता, सपना और राकेश ताई। रायगढ़ से निशा डोमिन, उमा डोमिन, जानवी डोमिन। सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभा रानी जी यादव और सुरेश यादव, नरेंद्र यादव। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये गलिया ये चौबारा। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत आया है श्रोता साथियों बरका काना से। फिल्म का नाम है श्रीदेवी। गीत के बोल हैं मोरनी बागा में बोले आधी रात में। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करदा जुड़ रहे हैं अफजाल ताज, सोहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, अफजल मलिक और भी श्रोता साथी हमारे इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी पथरोड से है विजय अम्बाड़कर, सुनीता अम्बाड़कर, अक्षय, रदिका, ऋषिकेश अम्बाड़कर। अकोला से हैं सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। चोकूनटी बुलंदशहर से हैं साथियों मोहम्मद सिद्धवासी, निगहित प्रवीण अब्बासी, शनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सदस्यगण। मलयान सरदना मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वी एम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी राजेंद्र गांव छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। साथियों अमरावती से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, हीरामन शेंडे जी, प्रेम प्रसिद्धि प्रतिभा गुणाने जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है मोरनी बागा में बोले आधी रात मां।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है अनारी, गीत के बोल हैं फूलों सा चेहरा तेरा। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं एजिटर अंसारी, खातून अंसारी, प्रभा महेश जी, वल्लीउल्लाह अंसारी जी, अजीम वकार जी जो कि दिल्ली से जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रहे हैं रुपेश संगे, महेश प्रगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। जुड़ना चाह रहे हैं सरगुजा माइन से प्रभा डोमिन, प्रमिला डोमिन, आशा डोमिन, निशा डोमिन और पूरा डोमिन परिवार सदस्यगण। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी, मिश्री देवी साहू। इसी बीच छत्तीसगढ़ पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा जी। अकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डाभिराव जी। गिरडीह झारखंड से हैं मोहम्मद आसिन अंजान, सावन नवाज, महत नवाज, हसन नवाज, मिफरत नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी सिंधी बुजुर्ग से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं फूलों सा चेहरा तेरा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जलालाबाद वेस्ट से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गंगनीजा, पुनम गंगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। इसी बीच हमारे श्रोता साथी जालौन से भी जुड़ रहे सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदक सार्थक और अलौकिक चंचोलिया जी। साथियों गंजूडवारा से जुड़ रहे हैं शमशुल कमर राय, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छोटू भाई शेख, साजन बेगम, फिजान शेख, फरुख शेख, वसीम शेख, अफशाना शेख, अश्मिरा शेख, इरफान शेख, जिन्नत शेख, फरहान शेख, अब्दुल्ला लोहेवाला, शादीजा शेख, ये अवरपुर से जुड़ना चाह रहे हैं। गंजूडवारा से हैं मोहम्मद खिल्लू परवेज, इमराना नाज, नाजिश शेख, दानिश शेख, नमर आफरीदी, राधा नामदेव जी। छत्तीसगढ़ से हैं मोतीलाल जी, सुशीला भिमटे, मेघा नेहा, येशु भिमटे। हदगांव नादेड़ से हैं प्रशांत जाधव, ऐश्वर्या जाधव और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणन श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राज, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी, केशव रिधान खुराना जी। झारखंड से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं अब्बास आलम, अमजाद आलम, लाडली और निशा और सभी घर के सदस्यगण जुड़ रहे हैं। मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। साथियों छत्तीसगढ़ से हैं चुन्नलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजी योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं दोस्त मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम, अनामिका सिंह। कृष्णा गोड़ के प्रशांत शिंदे, प्रोशी शिंदे, यशा शिंदे, सुनीता शिंदे, रोहित दास चौक पंडापुर से जुड़ना चाह रहे हैं ये। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, अंकिता, हंसिका, वेदही जोशी। अब्दुल गफार डावर जी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, जयवंती केवट जी मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं, और आपको बताना चाहेंगे कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। साथियों आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन वाग रेडियो 90.8 FM, जहां हर लम्हा है खास और हर कार्यक्रम में है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। संध्याकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूं और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे कार्यक्रम आराधना। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 5 बजे भक्ति और श्रद्धा के साथ में। 5:30 पर शुरू होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज। युवाओं की आवाज कार्यक्रम में जहां युवा सोच, जोश और बदलाव की बातें होंगी सिर्फ आपके लिए, और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं और महक सोनी। शाम 6 बजे आप सुनिए सच्चा बचपन, मासूमियत कहानी और सीख से भरी प्यारी सी घड़ी। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर और अंजलि पाराशर। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे आजादी के सही मायने और जिम्मेदारियों की बातें। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है महिलाओं से जुड़ा विशेष कार्यक्रम घूमर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारी बहनों की कहानियाँ, उनकी प्रेरणा के बारे में जान पाएंगे। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है नई पुरानी गजलें। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में। तो साथियों, ये थी हमारी संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाए
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर
3: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के

0: भाई बोनो, घर तक के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ

0: सड़कों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
3: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
3: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
4: वाघ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनू खवानू सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
6: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
7: वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो मानवता, सेवा और जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल,
1: ये विषय है रक्तदाता का महत्व। मनीषा और कशिश, रक्तदान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं है बल्कि मानव जीवन को बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है।
2: बिल्कुल,
1: जब कोई व्यक्ति अपना रक्तदान करता है तो वो किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन देने का कार्य करता है।
2: जी हाँ,
1: दुनिया में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती है श्रोता साथियों जब किसी मरीज को तत्काल रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में रक्तदाता किसी देवदूत की तरह सामने आते हैं और किसी की जिंदगी बचा लेते हैं।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे युवा साथियों से ढेर सारी बातें जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना यहाँ पर एक प्यारा सा गीत हमारे साथियों को हम पहले सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं रक्तदाता के महत्व को लेकर।
1: जी हाँ,
0: जैसा कि जागृति जी हम सभी जानते हैं कि रक्तदान को महादान कहा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा दान है जो सीधे किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में मदद करता है। हम देखते हैं कि दुनिया में अनेक ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब किसी मरीज को तुरंत रक्त की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि दुर्घटनाएं हुई, प्रसव के दौरान अधिक रक्त बहना हो गया, या फिर कोई अन्य गंभीर बीमारी साथियों। इन सभी चीजों से पीड़ित लोगों को समय समय पर रक्त की जरूरत पड़ती ही है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे समय में रक्त करने वाले लोग किसी के लिए जीवन दाता बन जाते हैं, जैसा कि आपने बताया था जागृति जी।
1: बिल्कुल,
0: और आज के समय में तो युवाओं की भूमिका रक्तदान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है।
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि मानव जीवन अनमोल है। किसी व्यक्ति का जीवन बचाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है।
1: बिल्कुल,
2: आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अनेक रोगों का उपचार संभव बनाया है, लेकिन आज भी रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं बनाया जा सका। जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, तब केवल एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान ही उसकी जान बचा सकता है।
1: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। रक्तदान केवल रक्त नहीं देता, बल्कि किसी परिवार की खुशियाँ, किसी माँ का बेटा, किसी बच्चे का पिता और किसी व्यक्ति का जीवन बचाने का कार्य करता है।
3: जी हाँ मनीषा, क्योंकि रक्त हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुँचाने का कार्य करता है। कशिश, यदि किसी व्यक्ति के शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकल जाए तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
3: जैसे कि हम देखते हैं कि दुर्घटना, ऑपरेशन, प्रसव, गंभीर बीमारियां या प्राकृतिक आपदाओं के समय रक्त की आवश्यकता बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल,
3: ऐसे में रक्तदाता की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा और कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि आज चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है।
1: जी हाँ,
3: लेकिन अभी तक कोई ऐसी कृत्रिम व्यवस्था नहीं बन पाई जो मानव रक्त का पूर्ण विकल्प बन सके।
1: बिल्कुल,
3: रक्त केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही दान कर सकता है। इसीलिए रक्तदाता समाज की अमूल्य संपत्ति होते हैं। वे न केवल किसी व्यक्ति को जीवन दान देते हैं, बल्कि समाज में सेवा और परोपकार की भावना को भी मजबूत करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम कह सकते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग है वो ऊर्जा, उत्साह और अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर होते हैं। यदि हमारे युवा साथी नियमित रूप से रक्तदान करने का संकल्प ले ले तो देश में रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, रक्तदान केवल एक सामाजिक कार्य नहीं है, बल्कि ये मानवता, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक भी है।
1: बिल्कुल,
0: हम जैसा कि हमारे श्रोता साथियों को बता पाए ही है कि रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई स्वस्थ व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रक्तदान में देता है।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, आपसे यहाँ पर कहना चाहेंगे कि सामान्य तौर पर एक बार में लगभग हम 450 मिलीलीटर रक्त ही दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर का बहुत छोटा भाग रक्त का होता है।
1: बिल्कुल,
0: बिल्कुल। और हम देखते हैं कि कुछ ही समय में शरीर इस भाग की भरपाई भी कर लेता है। इसलिए श्रोता साथियों, रक्तदान करना हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया होती है।
1: जी हाँ,
0: जिसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा स्वच्छ और वैज्ञानिक तरीके से रक्त लिया जाता है, और एक बार उपयोग होने वाली सुई और उपकरणों का उपयोग भी सुरक्षित तौर पर किया जाता है।
1: जी हाँ,
0: जिससे संक्रमण का कोई खतरा भी नहीं रहता। जागृति जी और मनीषा
2: जी, बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रक्तदान करके व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा करता है।
0: बिल्कुल,
2: रक्तदाता यह नहीं देखता कि रक्त पाने वाला व्यक्ति किस जाति, धर्म या वर्ग से संबंधित है। वह केवल एक इंसान की सहायता करता है। साथ ही हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य आपातकालीन घटनाओं में अचानक बड़ी मात्रा में रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है।
1: बिल्कुल,
2: ऐसे समय में रक्तदाताओं की उपलब्धता अनेक लोगों की जान बचा सकती है।
3: तो जैसा कि मनीषा और कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं रक्तदाता के महत्व को लेकर, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी रक्तदाता के महत्व को लेकर, तो कहा गया है कि न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव, रक्तदान से बड़े मानवता का प्रभाव।
1: बिल्कुल
0: की श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि रक्तदान के माध्यम से समाज में भाईचारे और मानवता की भावना मजबूत होती है।
1: जी हाँ,
0: रक्तदान करते समय न तो जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, न ही भाषा देखी जाती है।
1: बिल्कुल,
0: रक्त का रंग सबका एक समान होता है।
1: जी हाँ,
0: संदेश हमें मानव एकता और समानता की प्रेरणा देती है।
1: जी हाँ,
0: रक्तदान हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ दोस्तों, रक्तदान का एक महत्व ये भी है कि वो मानवता की सेवा और जीवन बचाने का सबसे सरल माध्यम है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हमने हमारे युवा साथियों को बताया था जागृति।

0: कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है। इसे श्रोता साथियों केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ही दिया जा सकता है।
1: जी हाँ,
0: जब किसी मरीज को तत्काल रक्त की आवश्यकता होती है तब रक्तदाता ही उसकी आशा बनता है। दोस्तों, एक यूनिट रक्त कई लोगों के जीवन को बचाने में जरूरी और सहायक माना जाता है। हम देखते हैं कि रक्तदान हमें मानवता की सेवा करने का सबसे अच्छा अवसर देता है।
1: जी हाँ,
0: जब हम किसी अजनबी की मदद के लिए रक्तदान करते हैं तब हम समाज में सहयोग और भाईचारे की भावना को भी मजबूत करते हैं।
2: बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल कशिश। इसी के साथ हम देखते हैं कि रक्तदान लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी और सहयोग की भावनाओं को भी बढ़ाता है। इससे समाज में एक दूसरे की मदद करने की संस्कृति भी विकसित होती है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि युवा किसी भी देश की शक्ति होते हैं। उनकी भागीदारी से सामाजिक परिवर्तन तेजी से संभव होता है। श्रोता साथियों, रक्तदान के क्षेत्र में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही हम देखते हैं कि युवा सोशल मीडिया, विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से रक्तदान के प्रति जागरूकता भी फैला सकते हैं। जागृति जी,
0: बिल्कुल।
3: और हम कह सकते हैं मनीषा कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है।
0: जी हाँ,
3: यदि युवा रक्तदान को अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बना लेंगे तो हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है।
0: बिल्कुल
3: श्रोताओ, रक्तदान केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य भी है।
0: जी हाँ।
3: कशिश, हमें समझना होगा कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब हमारे किसी अपने को रक्त की आवश्यकता पड़े।
0: बिल्कुल,
3: हम आज रक्तदान करेंगे श्रोताओं तो कल किसी और का रक्त हमारे प्रिय जन का जीवन बचा सकता है।
0: जी हाँ।
3: इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि रक्तदाता समाज के वास्तविक जीवनदाता होते हैं। उनका योगदान अमूल्य है और उनका महत्व शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
0: जी हाँ, बिल्कुल।
3: रक्तदान एक ऐसा दान है जो दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के जीवन को सार्थक बनाता है। ये सेवा, करुणा और मानवता का सर्वोच्च उदाहरण है।
0: बिल्कुल।
3: इसीलिए श्रोता साथियों, हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए, हमारे मन में ये बिठा लेना चाहिए कि स्वस्थ होने पर नियमित रूप से रक्तदान करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: बिल्कुल,
3: किसी की धड़कनों को चलाए रखने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। रक्तदान करके हम किसी के जीवन की बुझती हुई आशा को फिर से जगा सकते हैं। मनीषा और कशिश, इसीलिए श्रोता साथियों आगे बढ़िए, रक्तदान कीजिए और मानवता की इस महान परंपरा को मजबूत बनाइए।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हमारे युवा साथियों से बातचीत हमारी चल रही है कि रक्तदान महादान कहलाता है, इसी बीच हमारे दोस्तों को हम ये बताना चाहेंगे कि जब हम रक्तदान करते हैं युवा साथियों तो इसके ढेर सारे फायदे भी होते हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ। जैसे कि सबसे पहला फायदा तो यही है कि हमें स्वास्थ्य जांच का अवसर मिलता है। जैसा कि जागृति जी, हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी आज के समय में काफी व्यस्त हो चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: और वे अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी कभार गंभीर भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे में हमारे युवा साथियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर ये हो सकता है कि अगर वे रक्तदान करेंगे तो रक्तदान करने से पहले उनकी स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी।
1: जी जी हाँ।
0: जैसे कि श्रोता साथियों, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, वजन और कई ऐसी जानकारियां इस जांच के दौरान हमें पता चलती है।
1: जी हाँ।
0: इससे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की जानकारी मिलती रहती है। और देखते हैं कि रक्तदान के बाद शरीर नए रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण करता है।
1: जी हाँ।
0: इससे रक्त निर्माण की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो सक्रिय होती है और हमारा शरीर स्वयं संतुलित हो जाता है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में हर वर्ष लाखों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। बढ़ती जनसंख्या, दुर्घटनाओं और बीमारियों के कारण रक्त की मांग लगातार बढ़ रही है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि कई बार अस्पतालों में रक्त की कमी के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ नागरिक वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान करे तो जागृति जी, देश में रक्त की कमी की समस्या को लगभग समाप्त किया जा सकता है।
0: जी हाँ।
3: हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लिए जीते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं मनीषा और कशिश जो दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए आगे आते हैं।
0: बिल्कुल,
3: रक्तदाता वही असाधारण व्यक्ति होता है जो बिना किसी पहचान, बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी अपेक्षा के किसी अनजान इंसान को जीवन का सबसे अनमोल उपहार देता है।
0: बिल्कुल
3: श्रोताओं, हमारी नसों में दौड़ता रक्त केवल हमारे शरीर की शक्ति नहीं है बल्कि समाज की आशा भी है। यदि हर स्वस्थ युवा वर्ष में कुछ बार रक्तदान करने का संकल्प ले ले कशिश, तो न जाने कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती है।
0: बल्कि
3: वो सेवा है मनीषा जिसमें ना कोई खर्च होता है ना कोई दिखावा होता है, लेकिन इसका प्रतिफल किसी के जीवन के रूप में मिलता है।
0: बिल्कुल जागृति जी,
3: साथियों आपको कहना चाहेंगे कि हम रक्तदान करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और मानवता की इस महान परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा अगर हम मन में ठान लेंगे, हम कई युवा साथियों की, कई लोगों की जान बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
3: क्योंकि सच्ची महानता बड़े पद या बड़ी संपत्ति में नहीं बल्कि किसी के जीवन का सहारा बनने में होती है।
0: जी हाँ।
3: इसलिए याद रखिए, हमारे द्वारा किया गया रक्त कुछ ही मिनटों में दान हो सकता है, लेकिन वही रक्त किसी व्यक्ति को जीवन के कई नए वर्ष भी दे सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ। और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दे हम।
1: जी, जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
2: जी हाँ,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल,
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
3: नमस्कार।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि बच्चे कैसे जाने कि उनकी दोस्ती सच्ची है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कशिश के बचपन की दोस्ती सबसे मासूम, सच्ची और दिल से जुड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें यह समझने की जरूरत होती है कि कौन सी दोस्ती वाकई सच्ची है और कौन सी सिर्फ मतलब के लिए साथ है।
0: बिल्कुल,
1: एक सच्चा दोस्त सिर्फ खेलने, खाने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होता श्रोता साथियों, बल्कि वो मुश्किल समय में साथ खड़ा होता है, ईमानदारी से बात करता है और आपके अच्छे बुरे दोनों समय में आपकी परवाह करता है।
0: बिल्कुल,
1: तो आज कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानेंगे कि बच्चे कैसे पहचान सकते हैं कि उनकी दोस्ती सच्ची है या नहीं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में पहले गीत सुन ले हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।
0: जी हाँ।

0: शुरू हो जाते हैं कि क्या मेरी दोस्ती सच्ची है। साथियों, ये जानना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वे अपने जीवन में अच्छे और सच्चे मित्रों को पहचान सके।
1: बिल्कुल।
0: तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बच्चों को बताएंगे कि वे कैसे जान सकते हैं कि उनकी दोस्ती सच्ची है या फिर नहीं।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि सच्चा दोस्त जो होता है वो हमें वैसा ही पसंद करता है जैसे कि हम होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, वो आपके रंग रूप, कपड़े, पढ़ाई या खेल की योग्यता के आधार पर दोस्ती नहीं करता। वो आपकी कमजोरियों को जानकर भी आपके साथ बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कभी खेल में हार जाएं तो वो आपको ताना नहीं मारेगा बल्कि आपको और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। हम देखते हैं कि जब आप दुखी होंगे, चोट लगी हो, किसी ने डांटा हो या अकेला महसूस कर रहे हो तो आपको समझाएगा और वो आपके साथ रहेगा। वो आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा, चाहे खुद थोड़ी मुश्किल में ही क्यों न पड़ जाए।
0: जी हाँ, साथी एक सच्चा दोस्त हर परिस्थिति में आपके साथ होगा। साथियों, चाहे खुश हो या दुखी, वह सिर्फ खेलने या खाने के समय नहीं, आपकी परेशानी के समय भी आपके साथ खड़ा होगा।
1: बिल्कुल।
0: जब आप कोई गलती करेंगे तो एक सच्चा दोस्त आपको डांटने के बजाय प्यार से समझाता है और आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। क्योंकि अंजलि जी, जो दोस्त हमारी उपलब्धियों पर ईर्ष्या करते हैं वे सच्चे दोस्त नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि एक सच्ची दोस्ती वही होती है जो आपकी उपलब्धियों पर श्रोता साथियों ईर्ष्या नहीं करता हो, बल्कि आपके साथ आपकी खुशियां मनाता हो, वही सच्चा दोस्त कहलाएगा।
1: जी हाँ।
0: जो दोस्त आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी तारीफ करता हो और आपकी बुराई नहीं करता हो, वही सच्चा मित्र है।
1: जी हाँ कशिश, हम कह सकते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमसे झूठ नहीं बोलता और न ही हमें धोखा देता है। श्रोता साथियों, वो आपके सामने ईमानदार रहता है। अगर आपने कोई भी गलती की है तो आपको प्यार से बताएगा, पीछे आपकी बुराई नहीं करेगा।
0: बिल्कुल।
1: आपकी कोई भी बात दूसरों को मजाक बनाकर नहीं बताएगा। अगर आप किसी प्रतियोगिता में जीतते हैं, अच्छे अंक लाते हैं या कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो सच्चा दोस्त खुशी से ताली बजाएगा, न कि जलन से दूर हटेगा। अगर यही बात करें कि कैसी दोस्ती में सतर्क रहना बहुत जरूरी है श्रोता साथियों, तो कशिश, जो दोस्त सिर्फ जब उन्हें आपकी जरूरत हो तब बात करें, ऐसे दोस्तों से हमें सतर्क रहना है।
0: जी हाँ।
1: जो दोस्त आपकी बातों को दूसरों के सामने हंसी का विषय बनाए, ऐसे दोस्तों से भी हमें दूरी बनानी है। जो जरूरत पड़ने पर साथ दे, जो जलन करें, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करें, जो गलत रास्ते दिखाएं, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या पढ़ाई से भागना, ऐसे दोस्तों से हमें सतर्क रहकर दूरी बना लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथी दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ मजबूरी में रह रहा है, आपका मजाक उड़ाता है, बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, साथ ही बात बात पर लड़कर रिश्ते तोड़ने की धमकी देता है, आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाता है या फिर आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराई करता है,
1: बिल्कुल,
0: तो वो आपका सच्चा दोस्त बिल्कुल नहीं है।
1: जी बिल्कुल।
0: ऐसे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही अब यही बात आती है कि हम सच्चे दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ईमानदारी की बात सबसे पहले हम करते हैं कि हमें खुद भी सच्चे बनना है, तभी सच्चे दोस्त हमें मिलेंगे।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही दूसरों की मदद आप करें और जरूरत पर अपने दोस्त का साथ दें। केवल अपने फायदे के लिए नहीं दोस्तों, स्वार्थी आप न बने। इसी के साथ ही दोस्तों की बातें ध्यान से सुने और उसकी भावनाओं की कद्र आप करें।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पा रहे हैं कि बच्चे कैसे समझे कि उनकी दोस्ती सच्ची है या नहीं। ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही कहना चाहेंगे कि सच्ची दोस्ती की पहचान करना बच्चों के जीवन का जरूरी हिस्सा है। जब बच्चे सीख जाते हैं कि कौन सी दोस्ती सच्ची है, तो वे जीवन में सही रास्ता चुन पाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा दोस्त जीवन भर साथ होता है, जो हंसी में साथ हो और आंसू में कंधा दे।
1: श्रोता
0: साथियों, कहना चाहेंगे कि सच्चा दोस्त वही है जो पढ़ाई और अलग जो चीजें होती हैं उनमें सुधार के लिए हमें सलाह दे। अगर आप गुस्सा करते हैं या झूठ बोलते हैं तो प्यार से समझाएं, डांटे नहीं और पीठ पीछे आपकी बुराई ना करें।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं श्रोता साथियों कि सच्ची दोस्ती बच्चों के जीवन में सबसे कीमती और सीख देने वाले अनुभवों में से एक होती है। कशिश यह न केवल खेलने हंसने तक सीमित रहती है, बल्कि बच्चों को सहानुभूति, ईमानदारी, विश्वास, सहयोग और जिम्मेदारी जैसे जीवन के असली मूल्य सिखाती है।
1: बिल्कुल,
0: एक सच्चा दोस्त वह होता है श्रोता साथियों, जो आपके साथ तब भी खड़ा हो जब आपसे सब दूर हो जाएं, जो आपकी अच्छाइयों पर खुश हो और जो आपकी गलतियों पर चुप न रहकर सुधार का रास्ता दिखाए।
1: बिल्कुल, और ऐसा भी कहा जाता है अंजलि जी कि बचपन में अगर सच्चा दोस्त मिल जाए तो ये किसी वरदान से कम की बात नहीं है। ये दोस्ती जीवन भर आपके साथ बनी रह सकती है। सच्चे दोस्त न सिर्फ आपके साथ खेलते हैं, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनने में भी मदद करते हैं। वे हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं और अच्छे रास्ते की ओर ले जाते हैं। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में हमारे बच्चों को समझना होगा साथियों कि दोस्ती केवल एक साथ खेलने या फिर हंसने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे को समझने और साथ निभाने की भी बात है। अगर कोई दोस्त इन कसौटियों पर खरा उतरता है तो हमें ये समझ लेना है कि वही हमारा सच्चा दोस्त है।
0: जी हाँ।
1: और एक बात और श्रोता साथियों कि खुद भी वैसा ही दोस्त बनने की आप कोशिश करें जैसा आप दूसरे दोस्त में देखना चाहते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि हर हंसने बोलने वाला व्यक्ति उनका सच्चा मित्र नहीं होता। दोस्ती वह होती है जो गिरने पर उठाए, जो गलती करने पर डांटे नहीं बल्कि समझाए, और जो अकेलेपन में सबसे पहले साथ दे। आज के बदलते और प्रतिस्पर्धा भरे माहौल में जहां स्वार्थपूर्ण संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं बच्चों को यह समझना जरूरी है कि सच्ची दोस्ती भावना से जुड़ी होती है, मतलब से नहीं। यदि बच्चा यह पहचानना सीख जाए कि कौन उसका सच्चा दोस्त है, तो वह न केवल भावनात्मक रूप से मजबूत बनेगा बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेगा।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमें अपने बच्चों को सिर्फ दोस्ती करने ही नहीं बल्कि अच्छी और सच्ची दोस्ती चुनने और निभाने की भी शिक्षा देनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: बचपन की दोस्ती ही जीवन की सबसे मजबूत नींव होती है।
1: बिल्कुल।
0: सच्ची दोस्ती किताबों में नहीं, दिल में लिखी जाती है। एक सच्चा दोस्त 100 खिलौनों से कहीं अधिक कीमती होता है।
1: जी हाँ। इसी के साथ दोस्तों ये बात भी आप ध्यान में रखें कि दोस्ती में दिखावा नहीं होता। यानी कि अंजलि जी, जो दोस्त केवल अच्छे कपड़े, खिलौने या फिर टॉफी के लिए साथ रहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: वे सच्चे मित्र नहीं माने जाते हैं। सच्चे मित्र दिल से जुड़े होते हैं साथियों, चीजों से नहीं। दोस्ती में भरोसा भी जरूरी है, लेकिन हर बात साझा करना नहीं। अगर कोई बात आप नहीं बताना चाहते हैं तो सच्चा दोस्त आपकी निजता की इज्जत करेगा श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही जब सब साथ छोड़ दे और एक दोस्त आपके पास खड़ा हो, वही आपकी सच्ची दोस्ती की असली पहचान है।
0: बिल्कुल।
1: अगर कोई दोस्त आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है और आपकी तुलना नहीं करता किसी और दोस्त से, तो वही आपका सच्चा मित्र है।
0: बिल्कुल।
1: इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे अंजलि जी कि दोस्ती में माफी और समझदारी भी जरूरी होती है। जैसे कि दोस्तों, कभी कभी दोस्तों में भी लड़ाई हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उस दोस्ती को खत्म करने के बजाय माफी मांग लेना और भूल जाना लड़ाई को सच्ची दोस्ती की निशानी होती है।
0: बिल्कुल कशिश, हम हमारे अभिभावकों से यही कहना चाहेंगे कि बच्चों को दोस्ती करने देना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उन्हें सिखाना कि दोस्ती में आत्मसम्मान जरूरी है। जब कोई दोस्त उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है तो ना कहने का साहस रखें, अपनी सीमाएं समझें और दूसरों की भी इज्जत करें।
1: बिल्कुल।
0: बचपन की सच्ची दोस्ती आत्मा को छू जाती है और जीवन पर प्रेरणा देती है। वह किताबों से नहीं, अनुभव से सिखाती है कि साथ निभाना क्या होता है। तो इस तरीके से कशिश, हमने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि दोस्ती क्या है और सच्ची दोस्ती के महत्व को हमें कैसे समझना है और बच्चे कैसे पहचाने कि उनकी दोस्ती सच्ची है या झूठी।
1: बिल्कुल।
0: तो आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, दोस्ती वो नहीं जो सिर्फ खेल के मैदान में साथ दे, बल्कि वो है जो जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ी रहे। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों, अब हम कार्यक्रम के माध्यम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में होने वाली बातचीत, सुनाए जाने वाले गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ।
1: तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
2: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, इटलेज मन का कहे कि

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहे हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 98.8 FM माते। मैं आप सबनों गणमान स्वागत करो हो हमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम की भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे जह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि आज बारिश नु मौसम आंबा वारो है, इन्हें पहले अपने अपने क्षेत्र में जल निकासी नु प्रबंधन हरते कर। तो आना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक की घना कानी बातें थाएंगा, पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले आपने हमरा विदा की मोने कर अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हम बढ़ते रहू आपू रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 98.8 FM माते।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
0: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
1: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
0: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागर रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्त रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है। विकसित भारत एक नारा नहीं, एक संकल्प है। जैसे कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी पहचान उसकी विविधता, संस्कृति, परंपराओं और असीम संभावनाओं से होती है।
0: बिल्कुल।
1: आज जब हम 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तब विकसित भारत का सपना केवल सरकारों या योजनाओं तक सीमित नहीं रहा।
0: बिल्कुल।
1: बल्कि ये देश के प्रत्येक नागरिक का संकल्प बन चुका है। विकसित भारत केवल एक आकर्षक नारा नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि यह एक ऐसी सामूहिक सोच है जो देश को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत के पहले गीत के साथ में हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वाकर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और बातचीत भी रही थी आपसे, कि आज हमारी बातचीत है आपसे विकसित भारत एक नारा नहीं संकल्प है।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि विकसित भारत का अर्थ केवल बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और आधुनिक तकनीक नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है ऐसा भारत जहां हर नागरिक को समान अवसर मिले, हर युवा को रोजगार मिले, हर किसान समृद्ध हो, हर महिला सुरक्षित हो और सशक्त हो, तथा हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके।
1: जी जी।
0: इसलिए कहा गया है कि विकसित भारत का सपना तभी होगा साकार जब हर नागरिक निभाए अपनी जिम्मेदारियों का भार।
1: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से विकसित भारत का अर्थ जो है वो हमें समझने की जरूरत है। जैसा कि आपने बताया कि हमारे मन में आधुनिक शहरें, चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार इंटरनेट और नई तकनीकों की तस्वीर उभरती है जब हम विकसित भारत की बात करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, क्या केवल यही विकसित भारत है? क्या विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति है, या फिर इसका अर्थ एक ऐसे भारत का निर्माण है जहां हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन मिले? तो बात करते हैं जागृति जी कि विकसित भारत का वास्तविक अर्थ क्या है। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि विकास का अर्थ केवल धन की वृद्धि नहीं होता। यदि किसी देश में बड़ी बड़ी इमारतें हों लेकिन लोग अशिक्षित हों, बेरोजगार हों और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो, तो उसे पूरी तरह विकसित नहीं कहा जा सकता। विकसित भारत का अर्थ है हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हर परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इसी के साथ जागृति जी महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षा मिले।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि विकसित भारत की नींव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यदि देश का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेगा और युवाओं को कौशल विकास के अवसर मिलेंगे, तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा शक्ति बन सकता है।
1: जी जी।
0: शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं श्रोताओं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार भी है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है अंजलि। देश की बड़ी आबादी युवा है, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल।
0: युवा ऊर्जा है, उत्साह और नवीन विचारों का प्रतीक होते हैं। यदि युवा सही दिशा में अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे, मेहनत करेंगे, नवाचार करेंगे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो विकसित भारत का सपना शीघ्र ही साकार हो जाएगा।

0: यह सब दर्शाता है श्रोता साथियों कि भारत विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है,
1: जी
0: लेकिन
1: हाँ।
0: अभी भी मंजिल बाकी है और यही कारण है कि विकसित भारत का संकल्प महत्वपूर्ण बन जाता है।
1: जी हाँ अंजलि, विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण आधार आत्मनिर्भरता भी है। जब देश अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं करने लगे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लगे तब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। श्रोता साथियों, कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में निरंतर सुधार भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं।
0: जी जी।
1: स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, उद्यमिता को प्रोत्साहन करना और नवाचारों को अपनाना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंजलि,
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में किसानों की भूमिका बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: यदि किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे कहना चाहेंगे कि आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई सुविधा, उचित मूल्य और कृषि शिक्षा के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा अंजलि, जब गांव और किसान दोनों खुशहाल होंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, हम यही श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि यदि किसी देश को वास्तव में विकसित बनना है तो उसकी शुरुआत शिक्षा से करनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: शिक्षा केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाती बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। एक शिक्षित समाज जागरूक होता है, वैज्ञानिक सोच रखता है, अंधविश्वास से दूर रहता है और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझता है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब गांव से लेकर शहर तक हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है कि विकसित भारत एक नारा नहीं एक संकल्प है।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों के साथ में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, यही बात करना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि अक्सर लोग सोचते हैं कि देश का विकास केवल सरकार का काम है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन सच्चाई ये है कि विकास में हर नागरिक की भूमिका होती है। हम अपने स्तर पर कानूनों का पालन करें, करों का ईमानदारी से भुगतान करें, स्वच्छता बनाए रखें, बेटियों को शिक्षा दें, पर्यावरण की रक्षा करें और सामाजिक सद्भावना बनाए रखें। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कह सकते हैं जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से कि विकसित भारत का एक महत्वपूर्ण आधार आत्मनिर्भरता है। जब देश अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करने में सक्षम होता है, तब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि नवाचार, शोध और स्थानीय क्षमताओं को बढ़ावा देना भी है। स्थानीय उत्पादों को अपनाकर और स्थानीय उद्यमों को समर्थन देकर हम भी इस दिशा में योगदान दे सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, आज का युग विज्ञान का युग है और तकनीक का युग है। विकसित देशों की सफलता का एक बड़ा कारण उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी विकास है।
0: बिल्कुल।
1: भारत ने अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, चिकित्सा और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। हम कह सकते हैं कि तकनीक का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन को बेहतर बनाने में किया जा रहा है। भविष्य का विकसित भारत विज्ञान और नवाचार पर आधारित है। श्रोताओं, इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है अंजलि। यदि विकास के नाम पर प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया जाएगा तो भविष्य संकट में पड़ जाएगा।
0: जी हाँ।
1: विकसित भारत का अर्थ स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, हरित वातावरण, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग भी है। हमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता को अपनी आदत बनाना होगा।
0: बिल्कुल। कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से जागृति जी कि विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं आता।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि सामाजिक एकता से भी आता है। यदि समाज जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बटा रहेगा तो विकास की गति प्रभावित होगी।
1: जी हाँ।
0: विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, विविधता को अपनी ताकत माने, सहयोग और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा दें। एकजुट समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। कहना चाहेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि विकसित भारत कोई ऐसा सपना नहीं है जिसे केवल सरकारें पूरा करेंगी और नागरिक दर्शक बनकर देखते रहेंगे। यह एक साझा जिम्मेदारी है, एक सामूहिक यात्रा है और सबसे बढ़कर एक राष्ट्रीय संकल्प है।
1: जी हाँ।
0: जब एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, जब एक किसान पूरी मेहनत से अन्न उगाता है, जब एक युवा अपने कौशल को निखारता है, जब एक महिला आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है, तब जागृति जी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा होता
1: है। बिल्कुल।
0: तब विकसित भारत की नींव और अधिक मजबूत होती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि देश का विकास केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक नागरिक की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से कर भुगतान करना, कानून का पालन करना, स्वच्छता बनाए रखना, मतदान करना और समाज के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करना विकसित भारत की दिशा में योगदान है।
0: बिल्कुल।
1: जब नागरिक अपने कर्तव्य को समझेंगे श्रोताओं और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देंगे, तब विकास की गति और तेज हो जाएगी। हालांकि हम देखते हैं कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, फिर भी कई चुनौतियां हमारे सामने मौजूद हैं अंजलि। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं विकास की गति को प्रभावित करती है। श्रोताओं, इन चुनौतियों का समाधान केवल नीतियों से नहीं बल्कि जनभागीदारी, जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से संभव है। हमें समस्याओं की चर्चा से अधिक उनके समाधानों पर ध्यान देना होगा।
0: जी हाँ जागृति जी, हमें ये भी याद रखना होगा कि विकसित भारत किसी एक दिन, एक योजना या एक घोषणा से नहीं बनेगा। यह करोड़ों लोगों के छोटे छोटे प्रयासों, सकारात्मक सोच, जिम्मेदार व्यवहार और राष्ट्र के प्रति समर्पण से बनेगा। श्रोता साथियों, हम ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जहां प्रगति के साथ संवेदनशीलता हो, आधुनिकता के साथ संस्कार हो और प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग हो।
1: बिल्कुल।
0: और विकास के साथ मानवता भी जीवित रहे। यही वह दृष्टि है जो भारत को केवल विकसित राष्ट्र नहीं बल्कि विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बना सकती है। विकसित भारत का भविष्य किसी और के हाथों में नहीं बल्कि हम सभी के आज के निर्णयों, प्रयासों में छिपा हुआ है। यही संकल्प हमारी जागृति जी सबसे बड़ी शक्ति है और यही हमारे उज्जवल कल की सबसे मजबूत आधारशिला भी है।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है विकसित भारत को लेकर, कुछ बातें रह गई है वो जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि विकसित भारत वास्तव में कोई साधारण नारा नहीं है, बल्कि कई करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। ये संकल्प एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का है अंजलि, जो आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण, वैज्ञानिक रूप से उन्नत और नैतिक रूप से श्रेष्ठ है।
1: जी जी,
0: आज आवश्यकता इस बात की श्रोता साथियों कि हम केवल विकसित भारत की बात न करें, बल्कि उसके लिए कार्य भी करें। जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा, जब युवा अपने सपनों को राष्ट्र के सपनों से जोड़ेंगे, जब शिक्षा, विज्ञान, कृषि और पर्यावरण को समान महत्व मिलेगा, तब विकसित भारत का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा।
1: जी जी,
0: विकसित भारत कोई दूर का सपना नहीं श्रोताओं, ये हमारे विचारों, कर्मों और संकल्पों में निर्मित होने वाला भविष्य है। हम सब मिलकर ये ठान सकते हैं कि हम अपने देश को विकास, समृद्धि और मानवता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान जरूर देंगे। इसलिए कहा गया है कि विकसित भारत केवल शब्दों का शोर नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य का संकल्प है। इसलिए हम ऐसे भारत का निर्माण करें जहां अवसर सबके लिए हो, सम्मान सबका हो और विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। जब हर भारतीय कहेगा कि देश का विकास मेरी जिम्मेदारी है, तभी विकसित भारत का सपना हकीकत बनेगा।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत रही कि विकसित भारत एक नारा नहीं संकल्प है, आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं श्रोता साथियों हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को।
0: नमस्कार।

0: अगाड़ी बढ़ेगा। शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा। शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: कार्यक्रम घूमर हमारा वारी अमर हित बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। हवे बोनो आप सब हामले रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहे हो हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: हवे बोने लेने हाजिर थी गये हो कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नया विषय ने हाथे जेम के मनीषा बोन आपड़े दर बुधवार ने दर शनिवार हाजिर थी जह एक नया विषय ने हाथे। आज आपड़े कार्यक्रम में भाई बोनो की बातचीत नो विषय है कि आपड़ी बोनों में कमजोरी ने समस्या ना हो कारण है ने समाधान बल्ले घरेलू उपाय हो अपना विषय के बाइन बोनो के चाहूंगा कि आज ना टाइम में आपड़ी जो बोने हैं ये हित तो दाड़ो काम करे हैं परिवार ने देखभाल सोरों नु ध्यान खेती नु काम नौकरी इनमें इन्हों ने सेहत नु ध्यान राखवानु टाइम इन्होंने नहीं मिली पातु इन्हें परिणाम स्वरूप आप देखो हो कि इन्होंने शरीर में कमजोरी थकान ने ऊर्जा की कमी महसूस इन्होंने थाय है। आज आप जानूंगा कि अपने बोनों में कमजोरी न हो कारण है ने घरेलू उपाय ने माध्यम की ई अणी समस्या तक की हरते बची सके।
0: हवे अंजलि बोन तो अणा विषय माते आपड़े बोनो खती घणा अक्का ની વાતે રેંગા અબર હમળા અગીત ને મોરે કર આપડી વાતે।
1: હવે તો બોને આપ હમળતરેસુ આપડો રેડિયો આપડી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માતે।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। साथियों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता ही है, और वो है निराशा। साथियों, कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे, हमारे सपने दूर लग रहे हैं और लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, निराशा केवल क्षणिक भावना है और इससे बाहर निकलने का रास्ता हमारे भीतर ही है। जब अंधेरा गहरा होता है दोस्तों, तो खुद पर भरोसा रखो, सूरज फिर उगेगा। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे साथियों कि निराशा से बाहर हम कैसे आए। बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो सभी के जीवन में कभी न कभी आता है, और वो है निराशा। और निराशा से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, आपने कभी सोचा है कि हम क्यों निराश होते हैं? बताना चाहूंगी दोस्तों कि कभी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं, या फिर कभी कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं तो कभी हम दूसरों से खुद की तुलना करने

साबिक नहीं आ रहे। यह सोचकर एक पल रुकिए और सोचिए कि कैसे आपने इस स्थिति से सीखा। जी हाँ दोस्तों, हर निराशा में छिपा होता है एक सीख और एक नया अवसर, जिसे बस हमें समझने की जरूरत होती है। यहीं मैं एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है उसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि निराशा केवल एक चुनौती है, अवसर नहीं। जी हाँ श्रोता साथियों, एक युवक था रोहित। वह अपने करियर में बहुत उत्साही था, लेकिन लगातार असफल होता रहा। हर नौकरी में रिजेक्ट, हर प्रयास में विफलता। धीरे धीरे रोहित निराश हो गया। वह सोचने लगा दोस्तों कि शायद मैं कभी सफल ही नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास एक मित्र था। उसने रोहित से कहा कि असफलताएं तुम्हारा अंत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें सही राह दिखाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। फिर दोस्तों रोहित ने अपनी गलती और स्थिति को समझा। उसने अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटा प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह अपनी पसंद की नौकरी में सफल हुआ। तो साथियों, ये हमें कहानी सिखाती है कि जो गिरकर उठना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हमें भी हमारे जीवन में ऐसा ही करना चाहिए कि हमें हमारी जो असफलताएं हैं, हमारी जो स्थिति है, उनसे बहुत सारी सीख मिल सकती है। और जब हम हमारे जीवन की कठिनाइयों को समझ जाते हैं, हमारे असफलता के पीछे के कारण को समझ जाते हैं ना साथियों, तो हम उन सारी चीजों में सुधार कर जीवन में नए मार्ग अपना पाते हैं। यही श्रोता साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है? अगर साथियों आप मेरी इस बात का जवाब देना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। श्रोता साथियों, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं मनोरंजन करवाना चाहूंगी आपको एक प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपसे सवाल किया ही था कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है। इस बात का जवाब श्रोता साथियों जब आप हमें देंगे ना, तो हमारे बहुत से दूसरे जो श्रोता साथी हैं, उन्हें भी अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करना और निराशा से किस तरीके से दूर रहते हैं ये सारी सीख मिल पाएगी। अब यही मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगी जिससे हम निराशा से बाहर निकल सकते हैं। साथियों, निराशा से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है खुद पर भरोसा रखें, यानी कि आपकी ताकत आपकी सोच में है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, आपकी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो आप हर निराशा से दूर रह सकते हैं। इसी के साथ जीवन में छोटे लक्ष्य बनाएं। हर छोटे कदम साथियों मनोबल बढ़ाते हैं। अच्छे मित्र और अच्छे लोगों के साथ जुड़े ताकि आपका जो जीवन है वो भी अच्छा बना रहे। और श्रोता साथियों, जीवन की सबसे बड़ी जो बात है वो हर किसी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, वो है धैर्य। धैर्य जिस व्यक्ति के अंदर है, वह व्यक्ति जीवन की हर समस्याओं हर कठिनाइयों से दूर रह सकता है। साथियों, कहना चाहूंगी हर निराशा में छिपा होता है एक सबक और एक नया अवसर। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात ये आती है साथियों कि अंधेरा जितना गहरा होता है ना, रोशनी उतनी ही तेज दिखाई देती है। हर कठिनाई हमारी ताकत बन सकती है अगर हम चाहें तो। कभी कभी दोस्तों हमें लगता है ना कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल भी हमसे बहुत दूर है और ताकत कम है। तब हमें ये याद रखना है कि हर सफल इंसान कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन उसने कदम रोकने की बजाय और मेहनत की। साथियों, जरा सोचिए कि यदि महान वैज्ञानिक, लेखक, खिलाड़ी और बिजनेस लीडर निराशा में ही रुक जाते तो आज हम उनके योगदान से वंचित रह जाते। इसलिए कभी अपने सपनों को मत छोड़ो, कभी अपने प्रयासों को कम मत आंको और कभी निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जीतता वही है जो गिरकर भी उठता है। हमें ये भी सोचना चाहिए दोस्तों कि सफलता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सच यह है कि बड़ी मंजिल भी छोटे कदमों से ही पूरी होती है। हर दिन जब हम छोटा प्रयास करेंगे, हर छोटे कदम निरंतर रखते रहेंगे और उन चीजों से नई सीख लेते रहेंगे, तो हम सफल अवश्य होंगे। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि अपने जीवन में एक छोटा कदम क्या उठा सकते हैं जो आपकी निराशा को दूर करे और आपके सपनों को करीब ले जाए। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। खुद पर भरोसा ही आपको निराशा से बाहर ले जाएगा। खुद पर भरोसा ही आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस देगा। जब आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, जब आप सोचेंगे कि कठिनाइयाँ केवल अवसर है, जब आप सोचेंगे कि हर गिरावट से मैं मजबूत बनूंगा, तो निराशा आपके पास टिक ही नहीं पाएगी। तो साथियों, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि निराशा से हम दूर कैसे रह सकते हैं। बातें कार्यक्रम में ढेर सारी हो गई है और समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहूंगी।

साथियों, आज हमने जाना कि निराशा जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे बाहर निकलना हमारे ही हाथ में है। जब हिम्मत और प्रयास साथ हो तो निराशा कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए याद रखिए कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद अवसर आता है। इसलिए निराशा में डूबने के बजाय एक कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। इसी संदेश के साथ आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhara.org, radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय हमारे जीवन से जुड़े एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: भाइयों और बहनों, जय अरे ग्राम सभा में बोले बोले हैं तो फैसला मजबूत है। वन अधिकार सिर्फ कानून नहीं, माँ जंगल तक की जरूर बोने में रिश्तो है। जे जंगल में हमसे है ई उन्होंने रक्षा करे है। तो आओ बोला नहीं भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा, ने जंगल में भविष्य सुरक्षित करा। बोला नहीं आवाज विकास में असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।